और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़ इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

जब मेरी आँख खुले तेरा नाम मेरे लब पे, मेरा हर सजदा तेरे लिए है, क्योंकि तू मेरा खुदा।

0: आजादी के रखवाले हैं। ये कौम की जान है। ईसार के कूगर है, सदा अजीम जवान।
1: जवानों का जज्बा की निशानी है।
0: कुदरती आफात हो या तामीर वतन का काम, हर घड़ी तैयार अफवाज पाकिस्तान।
2: Father of the nation, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah said, "Let us mobilize all our resources in a systematic and organized way and tackle the grave issue that confronts us with grim determination and discipline worthy of a great nation."
3: पासबाने वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए FM 101 के साथ हैं।
4: मेरा नाम नसीरुल्लाह अवान है। मैं उस वक्त टूरिस्ट ऑफिसर था सवात में। लोगों का जज्बा बहुत ही बुलंद था। वो हमसे आकर कहते थे कि हम अपने ही असलिया के साथ महाज पर जाना चाहते हैं, हमें बताएं कि हम किसको कांटेक्ट करें। जब कभी हमारे एडवर्सरी के जहाज गिरते थे और ये खबर वहाँ पहुँचती थी तो वो मिठाइयाँ बांटते थे, और खेम करण में जब फौज ने चढ़ाई की तो उस वक्त भी वो ऐसा ही हुआ। लोगों ने चंदा किया, पैसे जमा किए, कपड़े जमा किए ताकि फौजियों को भेजे जा सके। पूरे मुल्क के हवाले से आपको लाहौर का तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, जब लाहौर पे वो हमला करने आते थे तो लोग और उनके जहाजों की लड़ाई होती थी तो लोग ऊपर चढ़ जाते थे अपनी छतों पे, और वो ये समझते थे कि ये कुछ पतंगबाजी हो रही है। और जब कोई जहाज गिरता था हमारे एडवर्सरी का तो वो तालियां बजाते थे, कहते थे वाह वाह वाह वाह क्या बात है। यही हाल हुआ कि जब हिंदुस्तान की फौज लाहौर में आके वापस गई और हमारी फौज ने आर्म्स लॉट किया तो उस वक्त बहुत सारे लोग महाज पे जाना चाहते थे जिनको रोकना मुश्किल हो गया, और उसके लिए ये बागबापुरा के पास एक बैरियर लगाया गया ताकि उससे लोग आगे न जाएं। बस हमारा पैगाम यही है जी कि लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। इस वक्त यूनिटी का फुकदान है, यूनिटी होना चाहिए, अल्लाह में ट्रस्ट होना चाहिए और पाकिस्तान की ताकत पे भरोसा करना चाहिए, और मुल्क में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो यूनिटी की।
3: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान FM 101 की खसूसी नशरियात अपनी जान नजर करें।

0: Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.
1: आजादी के रखवाले हैं। ये कौम की जान है। ईसार के फूगर है। सदा अजीम जवान। हर घड़ी तैयार अफवाजे पाकिस्तान।
0: सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।

0: Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates from our channel.
1: पासबान वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए FM 101 के साथ रहिए।
2: मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। 1965 की जंग के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो कुदरती तौर पर मैं बेहद जज्बाती हो जाता हूँ। जिंदगी के वो 17 दिन मैं भूल नहीं सकता। जब दुश्मन ने मेरी सरजमीन पाक की तरफ मैली नजर से देखा और बगैर किसी ऐलान जंग के बुजदिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, अफवाज पाकिस्तान ने इस चैलेंज को कबूल किया और दुश्मन की दीवार बन गए। यकीन करें, जिस बहादुरी और जुर्रत और बिजली के साथ अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन की फौज का पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने मुकाबला किया, वो तारीख में सुनहरी लफ्जों से लिखा गया। चविंडा के महाल पर दुश्मन के 600 टैंकों ने, जिस बहादुरी और दलेरी से पाक फौज के जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर टैंकों को कब्रिस्तान में बना दिया, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जिंदा दिलाने लाहौर उस शोक को कैसे भूल सकते हैं जब एमएम आलम ने दुश्मन के हवाई जहाजों का मुकाबला करके उन्हें वासले जहन्नम किया। पठानकोट का हवाई अड्डा हो या हलवाड़े का, दुश्मन के जो भी जहाज हमला करने के लिए तैयार खड़े थे कि अचानक पाकिस्तानी जहाजों ने हमला करके दुश्मन के जहाजों को और उसके हवाई अड्डे को तबाह बर्बाद कर दिया, जिससे

सामने इसके साथ ही रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से अपनी मेजबान परवीन अंसारी, प्रोड्यूसर अल्ताफ हुसैन लगारी, माविन जफरुल्ला शेख, स्टूडियो इंजीनियर मोहम्मद दानियाल और निगरान इंजीनियर शफी अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब से ठीक कुछ ही देर के बाद ठीक 9 बजे रेडियो पाकिस्तान से आप खबरें सुनेंगे।

सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। यौमे दिफा और शोहदा आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के अज़्म का इआदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात पर मबनी मईशत के फरोग और पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए आलमी मरकज बनाने का आज़म जाहिर किया है। शायर, सहाफी और सियासी कारकुन हसन आबदी की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ख्वातीन के T20 एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल दुबई में हांगकांग के खिलाफ खेलेगा।

0: वेलकम बैक वंस अगेन लिसनर्स, एक बार फिर हम आपको
1: And now you are tuned into
2: FM 101
3: FM 101
4: FM 101
5: FM 101
6: FM 101
7: 101 101 101

0: आप देखें फिर आप बोलेंगे इसको छोड़ो इसको देखो, भाईजान ऐसा होगा
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि सुबह क्या बड़ी तेज है अपनी बात।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। यौमी दिफाउ शोहदा आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद तमाम खतरात के खिलाफ मादरी वतन के दिफा के अज़्म का इआदा करना है। यौमी दिफाउ शोहदा के सिलसिले में आज सुबह कराची में मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की एक पुरवकार तकरीब हुई। वजीर आजम ने बरामदात पर मबनी मईशत के फरोग और पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए आलमी मरकज बनाने के अज़्म का इजहार किया है। खवातीन के T20 एशिया क्रिकेट कप में
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: And now you are tuned into
1: 101 FM 101
2: FM 101
3: FM 101
4: FM 101
5: 101 101

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दिस इज FM 101।
2: लव यू पाकिस्तान।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। आज यौम दिफा और शोहदा मनाया जा रहा है, जिसका मकसद तमाम खतरात से वतन अजीज के दिफा के अज़्म का इयादा करना है। सदर, वजीर आजम और मुसल्ला अफवाज के सरबराहान ने यौम दिफा और शोहदा के मौके पर पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज के शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद झड़पों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल ख्वारिज के मजीद 21 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। आज चीन के शहर होलनबर्ग में खवातीन की जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1.
2: द लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर, ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: Sweet Sauce.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: ये केसरी रंग सजाया है।
1: बिलाल हमेशा कहता था, मां जी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मुझे लगेगा तो गोला वो भी सीने पे, उसकी ये ख्वाहिश भी।

0: now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: When it comes to defend the soil, when it comes to rule the oceans, when it comes to conquer the airs, here comes the defender of freedom, one and all, the soldier of Pakistan.
1: पासबाने वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए FM 101 के साथ रहिए।
2: पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ, जो पाकिस्तानी उन्हें पाकिस्तान की कदर नहीं है, जो कदर पूछनी है तुम से पूछो, अकमा क्या हुआ और क्या होता रहा है। बस मुझसे पूछो, मैं दो भाई मेरे, एक 9 साल के थे, एक 6.5 साल के, गोद में अपने भाई को लेके मैं बैठी हूँ, लाश ऊपर से दो शहीद गिरे, वो शहीद हो चुके थे, मैंने उन्हें उठाया तो मेरे बड़े भाई उनके नीचे दब चुके थे, तकरीबन एक कोने में सिर्फ शहर के करीब लोग थे जो एक दूसरे के ऊपर, हर तरफ से पानी पानी की आवाज थी हर तरफ। मेरे बेटे गोद में थे पैसन की जंग में, तकरीबन 4-5 महीने के, वो इंडिया का जो सब कुछ देखा वही सामने आ चुका था। इस वक्त 65 की जंग हुई है, हमें ये सोचना चाहिए था कि हमें इस मुल्क की हिफाजत करनी है, जो आज तक हम ये कोशिश करते रहे फिर हम कर नहीं पाए हैं। हमें चाहिए कि इसकी हमें कदर करनी चाहिए कि हमें क्या मिला है और क्या हम चाहते थे। 65 की जंग में हम अल्लाह ताला से दुआएं करते थे, हम अपने फौज के साथ साथ थे, दुआ करते थे कि या अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करो, इस बुरे वक्त से हमें निकालो। अल्लाह से बहुत दुआएं, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल करी और हमारी आर्मी को कामयाब रखा।
1: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, FM 101 की खुसूसी नशरियात अपनी जान नजर कर।
3: Founder of Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, "Nature has blessed us with a good many raw materials of industry, and it is up to us to utilize them to the best of the state and its people."

0: गीत संगीत प्यार नूर जहां, शेर नगमाए हजार नूर जहां, अंधली पे चमन सदाए वतन, पुरकशिश पुरवकार नूर जहां, जीते जी हो गई है लाफानी, नगमगर नगमाबार नूर जहां।
1: Listen to the sound of music.

कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 1910 में जिला रावलपिंडी के एक गांव सिंघोड़ी में पैदा हुए थे और 1944 में पंजाब रेजिमेंट में एक कमीशन हासिल किया। 1948 में कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पंजाब रेजिमेंट की दूसरी बटालियन की एक कंपनी की कमान कैप्टन मोहम्मद सरवर के हाथ में थी। 27 जुलाई को उन्होंने उड़ी सेक्टर में दुश्मन के निहायत मजबूत मोर्चों की तरफ पेशकदमी की। अभी इनकी कंपनी दुश्मन से 50 गज के फासले पर थी कि वो मशीन गन, दस्ती बमों और मार्टरों की जबरदस्त फायरिंग की जद में आ गई, जिससे पेशकदमी में रुकावट पैदा हो गई और बहुत सा जानी नुकसान हुआ। इस मौके पर गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद दुश्मनों के बाजू से गुजरकर अपनी एक प्लाटून को दुश्मनों के बंकरों से 20 गज से भी कम फासले पर ले गए। यहाँ इन्हें खारदार तारों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने इंतहाई दलेरी से दुश्मन की मशीन गनों को दस्ती बमों की बौछार से खामोश कर दिया। इस दौरान इनका दायां बाजू भी जख्मी हो गया। दुश्मन की गोलियों की बौछार से हरासा हुए बगैर उन्होंने एक शहीद साथी की ब्रेन गन उठाई और दुश्मन पर गोलियां बरसाने लगे। साथियों को लेकर खारदार तारों को काट रहे थे कि इस दौरान खुदकार हथियार से निकली हुई गोलियों की बौछार इन्हें शहादत से हमकिनार कर गई।

लो जनाब सैफुल्ला डूंगा बुंगा विद लव, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सैफुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम दे विच शामिल होए। फरूक जट कोटिंग पेंट कैनाल रोड लाहौर तो साढ़े प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने, आखदे ने जिंदाबाद, बालो बत्तियां कोक स्टूडियो प्ले कर दे जनाब हुक्म से रखी ते। राणा फरूक भाई थोड़ा शुक्रिया, मोहम्मद नवाज भाई थोड़ा शुक्रिया, यासीन भाई थोड़ा शुक्रिया, महामाही थोड़ा शुक्रिया।

हेलो जी, प्रोग्राम दे विच शामिल हो गए। भला कौन शामिल होए? अब्दुल हमीद फरूकाबाद तो शामिल होए। अब्दुल हमीद आखदन, यकीन करो, एक तो जदों तुसी प्रोग्राम में चमदे हो तो एवं मालूम होंदा कि कोई अपना साडा प्रोग्राम दे विच आ गया, अपना साडे नाल गल्लां पै करदा, अपना साडा कोई साडा परौणा बन के बैठा। और फिर आखदन कि कदी आओ तुसी मेरे कोल, तुहानूं मैं खवावां बर्फी। अगों मैं आख्या बर्फी मैं ढिली ढिली नहीं खानी, बल्कि पक्की पक्की खानी है, सुक्की सुक्की खानी, जिहदे विच ज़्यादातर चीनी महसूस होंदा कि लगी हुई है, वो वाली बर्फी मैं तुहाडे कोल खावणी। कहिंदे आ जाओ, मैं तुहाडा इंतजार करदा, बल्कि हुणे आ जाओ। अब्दुल हमीद साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया, बड़ियां मेहरबानियां। और अब्दुल हमीद साहब ने आख्या कि सलीम दर्जी जिहड़े ने उन्हां दा बेटा हसन सलीम, ते हसन सलीम दी है अज बर्थडे, ते उन्हां नूं तुसीं बर्थडे विश करो। लो जनाब,

जी जमाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो, खुश हो? जमाल भाई ने भी टाइम कढ़िया, लेट हो गए प्रोग्राम दे विच, बहर हालात आ गए। जमाल भाई थैंक यू सो मच, तुसी प्रोग्राम दे विच शामिल हो, नाल सांझ पाई करो, सोहनी जी गल कीती करो, अच्छा लगदा है।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, रोजाना बोल रही
0: हूँ जी। बिस्मिल्लाह जी,
1: अब गला सही हुआ?
0: कुछ सही होया
1: बस वो मेडिसिन और ठंडी चीजें खा खा के ना।
0: जी जी जी जी,
1: वो बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है।
0: बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।
1: कालू को भी चाहिए ना आज, वो पैसे पे बात करें जिन्होंने हमारी खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं, उस पर भी बात करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और करी जा रहे हैं।
0: ठीक कह रहे हो। ते टॉपिक तो वैसे तुसी की कहोगे?
1: जो मिले खा लेती हूँ मैं तो।
0: नहीं नहीं नहीं, घर दा जेड़ी घर दे विच
1: बेटा मेरा जो है ना वो चिकन खाता है ज्यादा।
0: सही सही, फरमाइश ज्यादा केदी चलदी है?
1: बस उसी की चलती है। मैंने अपना खाना हो तो फिर लदा बना के खा ले।
0: सही सही सही,
1: आज भी बैंगन पका लिए, कढ़ी बना ली।
0: सही सही सही सही,
1: और चिकन पापी नहीं अभी आई।
0: आ जाते ने, आ जाते ने, आ जाते ने।
1: थोड़े से ना वो जंगी तराने भी दे दे ना। मेरे अबू भी फोन में थे ना, माशाल्लाह कैंसर की जंग उन्होंने ना सम जोड़ियां में
0: लड़ी थी। दस रहे सो
1: काफी हिस्से उन्होंने ना पता कर ले थी।
0: सही सही सही सही सही, चलो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
1: चलो ठीक है। और जो है बख्शी वाले भाई को सलाम, और जो बड़के मारते हैं शहजाद भाई, पता
0: नहीं। हाँ शहजाद भाई बड़के मारते
1: हैं। और एक और ये मुझे नाम भूल जाते हैं ना।
0: ओके कोई बात नहीं, सलाम पहुंच गए। लोग बड़े रख रखाव वाले समझते हैं इन चीजों।
1: अभी वो शदारे वाली नहीं आई, पता नहीं क्या नाम है, जो उर्दू में बात करती
0: है। आ जाती बच्ची, आ जाती आ जाती आ जाती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
1: खुदा हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से सर भाई आपको वेलकम खुश आमदीद जी आया नु एलन मसैलन मरहबा भली करी आया नु ते बगैर आ गए कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा करम
1: बहुत अच्छा शो सुपर डुपर और जिनकी बर्थडे आज उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू और बहुत सारी बेस्ट विशेज आपके लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए। और घर में मैं और अम्मी है तो हम ज्यादा मेरी चलती है।
0: वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई हूं जो मटन पके ना मटन फिर मैं दसना मैं भी आ जाऊंगा।
1: हमारे घर बीफ बनता है ज्यादा।
0: ना मैं फिर नहीं आंदा ना टेंशन लो।
1: और बिरयानी तय वाली बनवाती हूँ।
0: हाँ वो बड़ी जबरदस्त होती जबरदस्त होती।
1: और दही भल्ले मैं खुद बनाती हूँ।
0: वाह भाई वाह।
1: तो मैं बड़े मजे मुझे बाजार के इतने पसंद नहीं है जितने मुझे अपने हाथ के पसंद।
0: गुड हो गया बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया
1: बहुत शुक्रिया। और तमाम सुनने वालों को शमसी ग्रुप को धीरे चाचू को अनिल चाचू को फरी आंटी सब रिजवाना आंटी आई थी उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर जी क्या हाल है?
0: बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह अमानत भाई ने
2: जी अमानत गार्ड फैसल टाउन तो
0: जी जी भाई
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम क्यों प्रोग्राम तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है अगर अच्छा होगा तो सारे कॉलर होने
0: बहुत शुक्रिया थोड़ी मेहरबानी
2: भाई ने लतीफ मुगल साहब ने सलाम भेजा उनका शुक्रिया था असि शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने सारे एडमिट याद किया तो रजा चौधरी सारे
0: जी जी
2: सर घर खाने की फरमाइश जी है बच्चे सारे करते ने ज्यादा ना बेगम फिर अपने देखो ना अपने हिसाब चलाना होंगे बेगम बच्चे बोलो कि कढ़ाई खानी है 500 रुपए या किलो बेगम ने अपने खर्चे हिसाब में करना लेकिन बेगम मैनेज कर दी
0: ये जरा बयान दे रहे हो भाई जाने मैं पता बाबी तो डरद दे रहे हो क्योंकि मेरी रेगुलर मेरी लिस्टनर है रेगुलर लिस्टनर है मेरा प्रोग्राम सुन रही है
2: बेटी खास तौर पर बड़ा कर दी ला लो चाहे अच्छे कॉलेज दस लाल देता तो बच्चे सारे बाकी जिन्हें भी आने सब अस्सलाम वालेकुम। सालगिरह थी एसन सलीम मुबारकबाद पेश करना सलीम भाई बहुत सलाम
0: अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर की हाल है ठीक हो?
0: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह।
3: घर दे विच जेड़ी डिश पक्के सर साडी बनेंदी अल्लाह दे हुक्म नाल।
0: वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई
3: वाह बड़ा सारा दे विच झूठ बोलदा है खुदा दे
0: अच्छा बोधी जट की कॉल सी और बोधी जट थोड़ा जहा ख्याल करया करो कि जी कॉल असं करनी होंगी ना लाइव कॉल है पूरी दुनिया से जा रही होंगी पूरी फैमिली सुन रहे होंगे ने लोग सफर दे विच सुन रहे होंगे ने खवातीन मर्द सुन रहे होंगे ने बच्चे सुन रहे होंगे ने साढ़े जोड़े अफसर ने वो सुन रहे होंगे ने हकूमती इदारे जोड़े ने कल सुन रही होंगे तो गुफ्तगू ऐसी करी दी है कि जी सारे पसंद आए और सियानी जी गुफ्तगू होंगी ने करी दी ऐसी गल नहीं करी दी कि जी किसी बुरी लग जाए किसी का दिल तोड़े या साढ़े वास्ते प्रॉब्लम हो चैनल वास्ते प्रॉब्लम हो थोड़ा जहा ख्याल करा करो अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने होंगे ने बोधी जट मैं थोड़ी कॉल इस वजह तो कट्टी माजरत के बुरा नहीं मना लेकिन कॉल करद सोचा करो कि तुसी लाइव जा रहे हो तुसी पर्सनल कॉल किसी नहीं कर रहे बल्कि तुसी बिल्कुल पब्लिक से यह गल कर रहे हो तो उस वजह तू कॉल जरा मोहतात होकर प्लीज करनी। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: जी बिस्मिल्लाह करा ते वालेकुम सलाम की हाल उस्ताद मोहतरम मैं तुहाडे कुर्बान।
0: बिस्मिल्लाह शहजाद भाई
3: माशाल्लाह जी खुशियां क्या बात है जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुंदा तुहाडा इत्थे 8 दिन इंतजार करी दा जनाब
0: मेहरबानियां मेहरबानियां ते दसो भाई घर दे विच केदी मन्नी जांदी एक डायलॉग बोल दो बस।
3: अच्छा डायलॉग बोल ले अच्छा लो जी डायलॉग सुन लो। बोलो नो मोर मर मर इंतजार करी दा जनाब
0: मेहरबानियां मेहरबानियां ते दसो भाई घर दे विच केदी मन्नी जांदी एक डायलॉग बोल दो बस।
3: अच्छा डायलॉग बोल ले अच्छा लो जी डायलॉग सुन लो।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Panorama.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक। One above FM 101.

alaikum Pakistan and assalamu alaikum to all the Lahorians, to all the Punjabians, to all the Pakistanis and of course to all the sweetheart listeners of FM 101. This is RJ Mahvish Zedi. Kya haal hai aapka, kaise hain aap, theek thaak hain, fit fart hain, enjoy kar rahe hain is khoobsurat se mausam ko hamare saath janab, aur dil ka mausam acha hona to sabhi mausam bahut khoobsurat lagte hain. और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि ये है स्पेशल संडे, और हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि संडेज़ हमेशा हमेशा स्पेशल होता है बहुत सारे हवालों से और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, और इस वजह से संडेज़ में लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं. एक तो ये छुट्टी का दिन होता है, हर इंसान को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर बंदे को होती है छुट्टी. बस ख़वातीन को छुट्टी नहीं होती, किचन से कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन कुछ ख़वातीन इस दिन भी जो है ना छुट्टी मना ही लेती हैं आखिर. तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खूबसूरत बात के साथ, और हमेशा की तरह मेरे पास है जनाब एक बहुत ही खूबसूरत बात. और हकीम लुकमान ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है. फिर किसी शागिर्द ने पूछा, अगर ये भी असर ना करे तो वो मुस्कुराए और बोले कि दवा की मकदार को बढ़ा दिया जाए. क्या बात है जी, ज़बरदस्त. और कभी कभी मोहब्बत और इज़्ज़त जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म के टारगेट्स हैं जिनको मीट करने के लिए लोग पता नहीं कितने हरबों को इस्तेमाल करते हैं, कितनी चीज़ों को, कितने तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोहब्बत और इज़्ज़त हमेशा, वो कहते हैं ना, परिंदे को भी दें तो वो आपका बन जाता है, वो पिंजरे का मोहताज नहीं रहता. तो जनाब इसी अच्छी बात के साथ हमने किया है प्रोग्राम का आगाज़, लेकिन चूँकि आज है 6 सितंबर 2026, तो हम 6 सितंबर 1965 के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें थोड़ी सी, कुछ यादें ताज़ा करेंगे आपके साथ, और इसी सिलसिले में एक ट्रैक जो है उसको हम ऑन एयर करेंगे, और उसके बाद हम आपसे मज़ीद इस बारे में, क्योंकि हमने सेगमेंटेशन की हुई है प्रोग्राम की, तो जनाब हम इस खूबसूरत से ट्रैक को ऑन एयर करते हैं चलकर, और इसको सुनते हैं. आप इसको एंजॉय करें हमारे साथ, इसके उस पार आकर हम करते हैं आपसे मुलाकात. सो स्टे ट्यून्ड.

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और आप इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक जो था वो इंजॉय कर रहे थे हमारे साथ, और 6 सितंबर के हवाले से जो थी ये खास सेगमेंटेशन जो है वो की गई है जनाब। और 6 सितंबर 1965 के हवाले से बात हो रही है कि भारत ने बग़ैर किसी ऐलान के रात के वक्त पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम ने वतन का दिफा किया। और इसी दिन की याद में पाकिस्तान में हर साल यौम दिफा मनाया जाता है, 6 सितंबर डिफेंस डे मनाया जाता है जनाब। और इस हवाले से हमने ख़ास तौर पे सेगमेंटेशन की हुई है और इसी हवाले से हम आपसे बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में मज़ीद बातों को शामिल करेंगे, मज़ीद गुफ्तगु आपसे करेंगे, लेकिन एक अदद और ट्रैक को हम करेंगे प्ले और उसके बाद हम आपसे मज़ीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं वो तो जानते हैं कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से आपने ऐड होना है प्रोग्राम में, लेकिन जो हमारे अपकमिंग लिसनर्स हैं उनके लिए हम बताएंगे वो भी इस ट्रैक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद FM 101।

Right, listeners, welcome back. Right after a very, very beautiful track, जबरदस्त एक आप पैट्रियोटिक ट्रैक जो है वो इंजॉय करें हमारे साथ. और सेगमेंटेशन जो है वो 6 सितंबर के हवाले से की गई है. और 6 सितंबर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि 6 सितंबर 1965 को भारत ने बगैर किसी ऐलान के रात के वक्त पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज और अवाम ने वतन का दिफा किया. यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है 6 सितंबर. और पाकिस्तान पर चूँकि भारत ने हमला किया, जिसके बाद कायदा जंग जो थी वो 6 सितंबर से 23 सितंबर 1965 तक जारी रही थी. और अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद पर ये जंग जो थी वो ख़त्म हुई थी. और पाक फ़ौज और अवाम ने इत्तेहाद और जवामर्दी से दुश्मन के नापाक अजायम को खाक में मिला दिया था. तो जनाब, ये तो दिन हमेशा ही मनाए जाते हैं और एक सुनहरी हरूफों में लिख चुके हैं, और हमारी जो मेमोरीज़ हैं उनमें हमेशा ये ज़िंदा रहते हैं. और कौम के जो जवान हैं, कौम के जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो पाक आर्मी है, उनको एक ट्रिब्यूट और एक सल्यूट पेश करते हैं हम हमेशा की तरह, और करते रहेंगे इंशाल्लाह. और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करे, और ऐसे ही हम दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब जो है वो देते रहेंगे. वो जैसे DGISPR ने एक बड़ा ही खूबसूरत स्टेटमेंट दिया था कि हम जवाब देंगे और टिका कर देंगे, तो ये वाकई में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो हमेशा ही मैं कहती हूँ कि गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाने के काबिल है. और आप हमेशा इन चीज़ों को जब याद करते हैं ना, तो ये चीज़ें तरोताज़ा हो जाती हैं, और आपका जज्बा, आपका जो एक जोश है आप में, एक वलवला पैदा करती हैं वतन से प्यार, वतन से मोहब्बत, हुबुल वतनी का जनाब. वेल, इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, और उसके बाद हम वापस पलटेंगे. आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ. और सेगमेंटेशन चूँकि हमने 10 to 15 minutes की थी, तो 6 सितंबर के हवाले से, तो अब हम अपने नॉर्मल जो रेगुलर शो है उसकी तरफ वापस आएंगे. और एक अदद सब्जेक्ट जो आपके साथ हमने शेयर करना है वो भी करेंगे, इस ट्रैक को शामिल करेंगे प्रोग्राम में. इसको सुनिएगा, इसके उस पर आकर आपसे करेंगे मुलाकात. आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है हमारे साथ, क्योंकि इस ट्रैक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है प्रोग्राम में. हमारे रेगुलर लिसनर्स तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे अपकमिंग लिसनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी डिटेल्स इस ट्रैक के बाद.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: Free socks. And now you're tuned into
2: FM 101
3: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
4: Tune in to One Above, FM 101.
0: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
5: This is FM 101. This is FM 101.

ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक राइट आफ्टर अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. और आप सुन रहे थे यार तेरे बिना मन जोगिया, ब्यूटीफुल ट्रैक. और जनाब साहिर अली बग्गा की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है पाकिस्तान में और ज़्यादातर रिक्वेस्ट की जाती है इस ट्रैक की. तो जनाब इसको मैंने ऑन एयर कर दिया, तो होपफुली कि आपको पसंद भी आया, अच्छा भी लगा. और अगर हम 4471 के मैसेजेस की जानिब जाएँ तो बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें और हमारे कह रहे हैं जी मैसेजेस को शामिल नहीं करें. और जे नहीं जी ऐसा नहीं है, सना का मैसेज है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है हमेशा ही. और कहाँ थी आप इतने अरसे से? वेल मैं यहीं पे थी, कहीं नहीं गई थी. लेकिन वो कुछ टाइम के लिए जो होता है ना, पॉज लेना जो होता है वो मज़ीद आगे बढ़ने की एक कोशिश होती है. और पॉज जो होता है उसके बाद जब आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो यकीनन आप जो है वो कामयाबी से ज़रूर हमकिनार होते हैं. तो सना मैं यहीं थी, कहीं भी नहीं थी, लाहौर में थी जनाब. आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं शाह हुसैन, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम द सिटी ऑफ पठान पेशावर से. ओके जी बाजी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वेरी नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच. और सब्जेक्ट के हवाले से इन्होंने बात की है कि आपने अभी तक सब्जेक्ट जो है वो शेयर नहीं किया, बिकॉज़ मैं सब्जेक्ट जो है ना वो ज़्यादा आरजेएस के सब्जेक्ट की तरफ जो है ना वो गौर और फिक्र करता हूँ. वेल गौर और फिक्र करना तो क्या ही खूबसूरत बात है, और ज़्यादातर इंसान जो है वो आज कल गौर और फिक्र से बहुत दूर हैं. और इसी की कमी जो है उस वजह से हम अपने जो एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स हैं उनकी तरफ नहीं जा पाते. तो जनाब आज मेरा टॉपिक है, मैं शेयर कर देती हूँ आपके लिए. शाह हुसैन जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और इसी के साथ साथ मैं जो है चूँकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 6:34 हो चुके हैं मेरे डायलअप पर. अगर किसी ने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के एन मुताबिक अपना डायलअप करना है तो जनाब आप कर सकते हैं 6:34 PM राइट नाउ ऑन माई डायलअप. तो जनाब आज मेरा टॉपिक है कि 5 ऐसी डेली हैबिट्स, यानी रूटीन की जो हैबिट्स हैं दैट डिस्ट्रॉइंग आवर ब्रेन, आवर ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी. ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हम आजकल के दौर के लोग हैं उनको खाया पिया याद नहीं रहता, उनको चीज़ें रख के वो भूल जाते हैं. कुछ जो उन्होंने बात की होती है समटाइम्स कुछ मिनट के बाद अगर आप उनसे दोबारा वो बात पूछें तो वो कहते हैं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, मेरा तो ऐसा मतलब नहीं था. समटाइम्स आप फ़ोन आपको होता है कि आपने फ़ोन लॉक किया है नहीं किया, समटाइम ऐसा होता है कि लोग कहते हैं पता नहीं मैंने दरवाज़ा लॉक किया है नहीं किया. कुछ ऐसी ही जो डेली में हमारे साथ रूटीन में बातें हैं, जो रूटीन में हमारे साथ केसेस होते हैं, हम अक्सर मेमोरीज के साथ जो है ना मेमोरीज हमारे साथ खेल रही होती हैं. क्यों? 5 ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो हमारी ब्रेन को हेल्दी रहने से डिस्टर्ब कर रही हैं, जो हमारी मेमोरी को डिस्टर्ब कर रही हैं. तो जनाब आज हम उन जो रूटीन हैबिट्स हैं उन हवाले से बात करेंगे जो हमारे ब्रेन को बैड टू वर्स्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो मेरे साथ रहिएगा 8 बजे तक, क्योंकि मैं इन 5 डेली हैबिट्स को आपके साथ शेयर करूंगी और आपसे जानूंगी कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी और आदतें हैं 5 जो हमारे ब्रेन को ख़राब करेंगे. ज़ाहिर बात है अगर आपका ब्रेन सही नहीं है तो आप फिज़िकली भी एक्टिव नहीं हो सकते. तो इसी हवाले से हम आज करेंगे गुफ्तगु. फेसबुक है www.facebook.com/FM101 लाहौर. इसके अलावा 4471 पे आप कर रहे हैं बात मुझसे, और अगर आप करना चाहते हैं ऑफ एयर कॉल तो वो भी पसंद शौक कर सकते हैं. 0420111111 इज़ द लैंडलाइन नंबर, यू ऑल पीपल हैव टू डायल. और इसके साथ साथ हम चलेंगे जी एक ट्रैक की जानिब, उसके बाद हम जाएंगे वापस. सो स्टे विद अस.

0: be back after this short commercial break. Stay.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: This is FM 101.
3: Big radio, big style. FM 101.
2: This is FM 101.
4: वेलकम बैक राइट आफ्टर अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. और आप सुन रहे थे बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्मी ट्रैक. और इसके साथ साथ बात हो रही है जनाब आपसे कि फाइव ऐसी बैड हैबिट्स, पांच ऐसी डेली की हैबिट्स जो कि डिस्ट्रॉय करिए हमारे ब्रेन को और हमारे ब्रेन हेल्थ को, हमारी ब्रेन मेमोरी को, और बैड से वर्स्ट की तरफ का सफ़र जो है वो जारी है. कुछ लोगों को तो पता चल जाता है, वो कहते हैं ना नॉलेज जो होना, तालीम होना, किसी बात की इल्म होना, तो वो और चीज़ होती है. एक चीज़ आपको नहीं पता या आपके नॉलेज में नहीं है, वो तो एक और सिनेरियो है ना, कि वो एक और चीज़ है कि आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप डेली में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. आजकल फ़ोन भी बहुत यूज़ होता है, कंप्यूटर भी बहुत यूज़ होता है. इसके अलावा हम बैठकर बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो स्क्रॉलिंग में और इधर उधर जो है ना फिज़िकली एक्टिव जो है ना, या एक्टिविटी कह रहे हैं, वो एकदम ख़त्म हो गई है या नापैद हो गई, आप ये कह सकते हैं. वेल जी, पांच हैबिट्स हैं. और समटाइम मैंने जैसे कि प्रोग्राम ट्रैक पे जाने से पहले बात की थी कि फ़ोन लॉक करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने लॉक किया है कि नहीं किया. समटाइम गेट हम बंद करते हैं, मेन गेट, जब हमने कहीं जाना हो कि हमने मेन गेट बंद किया है या नहीं. ये तो फ़ोन की बात है ना, जो हमारे पास होते हैं ऑन ऑल द वे, हमारी पॉकेट में होता है, हमारे बैग में, हमारे पर्स में. तो फ़ोन हम लॉक करना, या फिर किताब का हम समटाइम जैसे होता है पूरा सफ़ा पढ़ लेते हैं और बाद में समझ आता है, रियलाइज़ होते हैं कि शायद एक भी लफ्ज़ जो है ना वो दिमाग में नहीं किया. शाम को हम इतना थक जाते हैं कि हम कहते हैं कि दिन भर कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं की, हमने बस टेबल पे बैठकर, चेयर के ऊपर बैठकर कंप्यूटर चलाया है, ऑफिस का काम बहुत सारा किया है, या स्कूल में भी बहुत ज़्यादा, अगर हम बच्चों के साथ, अगर हम टीचर हैं या कुछ भी हैं, तो हमने कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं की, तो हम थक क्यों गए हैं. कोई ऐसी बोझ उठाया नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, कोई भारी सामान नहीं उठाया, लेकिन हम थक क्यों गए हैं. जहन जो है वो प्रॉपर क्यों नहीं वर्क कर रहा, या फिर हम बहुत ज़्यादा जो टेबलेट्स होती हैं वो खा रहे होते हैं कि हमारा सर में दर्द बहुत है, हमारे पट्टे खींच गए हैं, हमें फटीग जो है वो फील हो रहा है, मेहनत वाला कोई काम भी नहीं किया और हम थक भी गए हैं. तो जनाब ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि ये आपके अर्ली साइंस हैं आपका ब्रेन डैमेज होने के, और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कितनी ज़्यादा तबाही जो है उसकी तरफ भाग भाग के जा रहे हैं. फर्स्ट आप, मैं आपसे जो पॉइंट है वो डिस्कस करूँगी, क्योंकि फाइव डेली हैबिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है. तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो है मल्टीटास्किंग. हमें ना शौक़ है हरफन मौला बनने का, ऑलराउंडर बनने का, जिसमें हम खाना भी पका रहे हैं. मैं सारे जो कैटेगरीज़ हैं उनको बताऊँगी. जैसे अगर घर में कोई खातून है, उन्होंने किचन में काम भी करना है, बच्चे को पढ़ा भी रही हैं स्कूल से जो बच्चा आया है, और इसके अलावा वो फ़ोन पर भी बात कर रही हैं, इसके अलावा वो कोई अहम जो जैसे कटिंग का काम है कुछ भी तो वो भी कर रही हैं, कोई मेहमान है उसे भी अपने किचन में ही बुला लिया कि चलो हम वहाँ जाकर बात करते हैं. तो ये तो एक बड़ी जनरल सी मल्टीटास्किंग है. इसके अलावा ऑफिस में अगर कोई बैठा है तो उसने लैपटॉप पे काम भी करना है, मीटिंग्स भी अटेंड कर रही हैं, इसके साथ साथ फ़ोन के ऊपर भी देखना है कि किसी ने स्टेटस को देखा नहीं देखा, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, कोई अहम बात तो नहीं हो रही कहीं रिश्तेदारों में, घर में, दोस्तों में, कहीं पर. तो ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये हमारे ब्रेन को डैमेज करिए. क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं हो रहा. जब हम फोकस नहीं कर सकेंगे तो ऑब्वियसली दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा. जब हमारा ब्रेन थक जाएगा, डेफिनेटली हमारी बॉडी थक जाएगी, हमारी बॉडी सोचना कम कर देगी, एक महदूद हद तक सिर्फ सोचेगी. और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की वजह से प्रॉब्लम्स देखा गया है, जो एक लेटेस्ट रिसर्च है वो साबित करती है कि मल्टीटास्किंग से हमारा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा तबाह हो गया है. अब एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं सिर्फ अपने ब्रेन को टेस्ट करने के लिए, वो ये है कि आप एक पेपर लें, एक पेन लें और आप बैठ जाएं. एक पेपर लेकर सफ़ेद और एक पेन लेकर आप बैठ जाएं और ए से लेकर जेड तक लिखें. और आप अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच ले लें, नहीं तो मोबाइल के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर जो ये मिनट्स चलते हैं वो जो सेकंड्स में चलते हैं, आपने उसमें देखना ए से लेकर जेड तक आप कितने वर्ड्स कितने टाइम में लिख लेते हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच ए टू जेड आपने लिखना, ठीक है। और उसके बाद आपने एक नंबर वन से लेकर नंबर 26 तक आपने वर्ड्स इन नंबर्स लिखने हैं। आप देखिए टोटल आपको कितना टाइम लगेगा, तो ये मैक्सिमम आपको लगेगा कोई 38 सेकंड्स, राइट, 38 सेकंड्स में आप टोटल ये लिख सकते हैं। मैं ये भी ज़्यादा बता रही हूँ, लेकिन साथ ही आपने दूसरी एक्सरसाइज करनी है, वो क्या है कि आपने लेकिन एक स्विच करके एक्सरसाइज कैसे करनी है, ए लिखना है उसके साथ वन लिखना है, बी लिखना है उसके साथ टू लिखना है, सी लिखना है उसके साथ थ्री लिखना है, इस तरह जेड तक आपने 26 वन ए वन बी टू सी थ्री डी फोर इस तरह लिख के जेड तक आपने 26 नंबर्स पूरे कर लेने हैं। आप देखेंगे कि जब आप ए टू जेड सिंपल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो आपको 38 सेकंड्स लगेंगे और नंबर वन से लेकर नंबर 26 तक, लेकिन जब आप यही एक्सरसाइज स्विच करके करेंगे ए के साथ वन बी के साथ टू थ्री के साथ सी के साथ थ्री डी के साथ फोर लिखेंगे और जेड तक 26 लिखेंगे तो आपके टोटल सेकेंड्स बन जाएंगे 55। दैट इज़ टू लॉन्ग, क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन को फोकस करने में मुश्किल आ रही है। तो फर्स्ट इसका हल ये है जनाब कि आपने करनी है मोनोटास्किंग, सिंपल वन टास्क, इसका सोल्यूशन ये है। मल्टी टास्किंग को छोड़ के जब आप मोनोटास्किंग के ऊपर आएंगे, एक सोल्यूशन एक काम करेंगे एक वक्त में, तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आएगा, वो अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी फ़र्क आएगा और आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फ़र्क आएगा। आपको चीज़ें याद रखने में, क्योंकि आपका फोकस कर सकेगा ब्रेन एक चीज़ के ऊपर, आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। तो जनाब ये बात तो मैंने आपसे कर ली और टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, लेकिन चूंकि मेरे लिसनर्स को बात समझ आनी चाहिए, कुछ हल निकलना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, बेसिकली हम आरजेस या हम प्रेजेंटर्स जब यहाँ बैठते हैं तो मेरी पर्सनली, मैं अपनी एज एन इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कोई ऐसी बात क्लिक कर जाए जो आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करें और आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा हो जाए। तो इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रैक की जानिब और फिर हम वापस आएंगे जनाब आपसे करेंगे बात। मैंने लाइन अप किया है कुछ इस तरह से जो आपको आएगा पसंद और इसके बाद आपके मैसेजेस को करूंगी शामिल, वरना बहुत सारे लिसनर्स नाराज हो जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद FM 101, दिस इज आरजे महविश ज़ैदी एंड द ट्रैक इज अबाउट सैया बाय आसिम अज़हर।

ऑल राइट जनाब, वेलकम बैक राइट आफ्टर अ ट्रैक. और उसके बाद आप जनाब सुन रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो भी शामिल करेंगे हम. पहले चार चार साथ एक मैसेजेस की जानी बढ़ा जाए तो सलमान अली हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सलमान, आपने सलाम दुआ हमें हमारे साथ किया है, बहुत बहुत अच्छा लगा है. और इसके अलावा हमारे साथ मारूख हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मारूख, क्या हाल है आपका. और कहती हैं आरजे किधर गायब थी आप, एक अरसे दराज से मैं आपको ढूंढ रही थी. ओह माय गॉड, आप मुझे ढूंढती भी हैं. कहती मैंने एफ एम अनुमन पे आके बाकायदा पूछा और मैंने उनसे ये कहा कि हमारी आरजे गुम हो गई. उन्होंने कहा जी आपकी आरजे गुम नहीं हुई हैं, वो यहीं पे हैं और वो कहीं नहीं गई. वल मारुख मुझे यकीन करें बहुत अच्छा लगा, और आपने इतनी सारी दुआएं दी हैं मुझे और इतना प्यार इतनी मोहब्बत मेरे साथ है. और यकीन करें दिल जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है बहुत सारी जब दुआएँ आपको मिलती हैं तो. और ये बेलॉस दुआएं होती है, यानी इसमें कोई गर्ज नहीं होती, किसी किस्म का कोई मफाद नहीं होता, किसी किस्म की कोई वो नहीं होती. सिर्फ आप आवाज़ सुनकर, हमारा और आपका आवाज़ का रिश्ता है ना, क्या हम बोलते हैं और आप सुनते हैं तो आपको हम पसंद आ जाते हैं. तो जनाब ये सबसे ही अच्छी बात है. इसी के साथ साथ मैसेजेस की जानी बढ़ेंगे. आप फेसबुक के मैसेजेस की जानी बढ़ा जाए तो वहाँ पर हमारे साथ हैं जी इर्तज़ा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम आरजे, कहाँ थी आप. वेल इतने सारे लोग सिर्फ मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थी, दैट मीन्स के आई वैल्यूड राइट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और आप सबके दिलों में मौजूद हूँ. तो ये मेरे लिए किसी एजाज़ से किसी ऑनर से कम नहीं है कि आप मुझे याद करते हैं और बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं. मेरे लिए बाकायदा आप मेरे पीछे पीछे भी आए और मुझे बहुत यकीन करें बहुत अच्छा लगा. और मेरी खुशी का वाकई में कोई ठिकाना नहीं है कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं. जरताश है हमारे साथ, कहती हैं चार चार साथ के साथ एक पर इन्होंने मैसेज किया और कहती हैं कि आप ही अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जरताश, कहती हैं आप ही, मैंने कहाँ थी आप. और आपकी आवाज़ सुनने के बाद अभी मैंने जस्ट रेडियो ट्यून इन नहीं किया था और मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह कुछ चल रहा होगा या बैक टू बैक मैं सुन लूँगी या कुछ भी. तो जैसे ही मैंने आपकी आवाज़ सुनी ना, और आप जब 6 सितंबर के हवाले से गुफ्तगू करी थी तो मैंने कहा ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी हुई है. और जैसे ही आपने कहा ना कि मैं आरजे महविश दी, तो यकीन करें खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. मैंने अपनी अम्मी को गले लगा लिया. ओह माय गॉड, ऐसे ही होते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हम उस बंदे को जाके गले लगाते हैं, जैसे आपकी मदर हैं, बहनें होती हैं आपस में. तो इस तरह से हम जब खुश होते हैं ना तो हम अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. मैंने अपनी अम्मी को गले लगा लिया. ओह माय गॉड, ऐसे ही होते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हम उस बंदे को जाके गले लगाते हैं, जैसे आपकी मदर हैं,

पहले तो मेरी शादी नहीं हुई हुई थी और मैं बाकायदा आपका प्रोग्राम सुनती थी, लेकिन उसके बीच में कुछ पॉज आया और आप पिक्चर से थोड़ी देर के लिए हट गई, तो अब मैं चूंकि मेरी शादी इस्लामाबाद हुई है और मैं वापस लाहौर आई हूँ, तो अब मैंने आज ट्यून इन किया क्योंकि मैं अम्मी की तरफ थी अपनी, तो मैंने जब ट्यून इन किया तो आपने आपका शो सुना, तो आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको याद होगा मैं आपका निक नेम मैंने चांद रखा हुआ है, तो जनाब अगर आप देखें तो मेरा जो नाम है ना महविश, उसका मतलब भी यही है, चांद के जैसी। तो रिमशा थैंक यू सो वेरी मच, इतनी सारी मोहब्बतों का, इतनी सारी दुआओं का, यकीन करें मेरे पास यही है कि मैं दुआ देती हूँ अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे रिमशा। और बहुत बहुत अच्छा लगा, यकीन करें कि मेरी मुझे मेरे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मेरा फ्लैशबैक में मतलब वो मुझे भूल गया, लेकिन एनीवेज मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी सारी मोहब्बतों का को सुनकर, मेरे पास यकीन करें लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं। हाँ दैट्स वेरी नाइस एंड आई फील सो ऑनर्ड, सो ऑनर्ड। अल्लाह ताला जितने लोग भी सुन रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको बहुत खुश रखे, और जो मुझसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुआएं देते हैं, यहाँ तक कि आप मेरे पीछे 101 भी आए तो जी बहुत बहुत शुक्रिया मारूख, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अब बातें बहुत सारी हो गई हैं, डायल अप की जानिब देखा जाए तो 6:58 हो गए हैं, ठीक 7 बजे जाना है हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए न्यूज़ बुलेटिन की जानिब, क्योंकि ख़बरों से बाखबर रहना भी बहुत ज़रूरी है। यहीं से हम टॉपिक को जो है वो अलाइन करेंगे, और 5 daily habits डिस्ट्रॉइंग आवर ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी, जो कि हमारी ब्रेन मेमोरी को ब्रेन हेल्थ को डिस्टर्ब करी है, कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं उस हवाले से हम कर रहे हैं बात। मैंने आपके साथ मल्टीटास्किंग एक आदत को शेयर किया, अब मैंने सेकंड आपसे शेयर करनी है, लेकिन हम चूंकि जाएंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए न्यूज़ बुलेटिन की जानिब, हमारे साथ रहिएगा कहीं मत जाइएगा और इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा।

मदीना, वेलकम बैक। और हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के बाद वापस आ चुके हैं और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ हैं ऑफ एयर कॉल्स में। मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ हैं और कहते हैं जैसे मैंने ट्यून इन किया मुझे एकदम आवाज़ आई, जी मैं आज माविश जैदी। तो जनाब मेरी जो है ना बहुत सारी दिल से दुआएँ निकली और मुझे बहुत खुशी हुई कि जी आप वापस आ गई हैं। जी बिल्कुल, मैं वापस आ गई हूँ और मैं कहीं भी नहीं गई थी, बस यहीं पर थी थोड़ी देर के लिए। एक पॉज जो था वो मैंने लिया था, लेकिन उसके बाद जो है मैं वापस आ गई हूँ अपने लिसनर्स के पास। तो जनाब बात हो रही है 5 हैबिट्स के हवाले से कि 5 ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करी हैं, जो हमारे ब्रेन हेल्थ को डिस्ट्रॉय करी हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताई मल्टीटास्किंग। आज का इंसान कहता है जी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। एक जो लफ्ज़ बिजी है ना वो हमने अपनी लाइफ में ऐसे ऐड कर लिए जैसे पानी के साथ कोई दवाई खाई जाती हो जो बहुत ज़रूरी हो। तो जनाब इसको तो सबसे पहले आप डिलीट करें और मोनोटास्किंग की तरफ आएँ, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, एक वक्त में आपने एक काम करना है बस, ताकि आपके माइंड को फोकस करने का टाइम मिले, आपके माइंड को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। और सेकंड जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो है डूम स्क्रॉलिंग। अब डूम स्क्रॉलिंग का क्या मतलब है कि फ़ोन पर ये आप सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत अहम काम करें, किसी मीटिंग में हैं, कोई अहम बात हो रही है या कुछ भी, या कोई घर में गेट टुगेदर है, तो उसमें क्या होता है इंसान कहता है मैं बस 5 मिनट में अपने फ़ोन को देख लूं। तो आप जब 5 मिनट देखते हैं तो देखते देखते वो लोग जो बाकी बैठे होते हैं वो बातें करते रहते हैं, डिसीजन होते रहते हैं। आप जब टाइम की तरफ वापस देखते ना तो वो पता चलता है ये तो 15 मिनट गुजर गए, मैंने तो 5 मिनट कहा था ये 15 मिनट हो गए। समटाइम ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह उठते साथ ही जो होते हैं ना वो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, बेड से उठते साथ ही आप जो होते हैं ना अपना फ़ोन देखते हैं और रील्स देखना शुरू कर देते हैं और चीज़ें, जो भी किसका मैसेज आया किसका नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका स्टेटस देगी ये कर वो कर सब कुछ। तो ये जो स्क्रॉलिंग है ना डूम स्क्रॉलिंग, ये 1 घंटा निकाल देती है आपका। आपको पता ही नहीं होता कि उठते साथ ही आपने किसी और की थिंकिंग को अपना लिया है, किसी और की बातों को अपना लिया है। आपकी अपनी सुबह तो नहीं है वो, आपकी अपनी तो कोई लाइफ ना हुई, तो आपने तो लोगों की बातों को ऐड करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर लेप करना शुरू कर दिया और आप उसी तरह बोल रहे हैं, उसी की तरह गुस्सा कर रहे हैं, उसी की तरह बात करनी शुरू कर दी। तो आपका ब्रेन जो है ना, बेसिकली मेरे मुताबिक मैं ये कहती हूँ कि ब्रेन एक घर की तरह होता है जिसमें मुख्तलिफ रूम्स हैं। जैसे हमारे घर में मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, कोई जैसे टीवी लाउंज है, एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है। इस तरह से हमारे जो रूम्स हैं उनकी सेक्शंस हुए हुए हैं कि ये सेक्शन ये है, इसमें हमने खाना खाना है, इस सेक्शन में हमने बैठ के जो है वो नमाज़ पढ़नी है, या इस सेक्शन में हमने गुफ्तगू करनी है, इस सेक्शन में हमने बैठ के टीवी देखना है, इस सेक्शन में बैठ के हमने ये करना है वो करना है। तो हमने सेक्शन किया हुआ है हर चीज़ को। बिल्कुल इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी ऐसा ही है। आप जो रील देखेंगे कुछ मील्स की होंगी, कुछ एंटरटेनमेंट की होंगी, कुछ फिटनेस से रिलेटेड होंगी, कुछ न्यूज़ होंगी, कुछ गॉसिप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई वीडियो आप देखते हैं तो आपके ब्रेन की एनर्जी एक, जैसे आपने किसी मील की कोई खाने की वीडियो देखी है या किसी को खाना बनाते हुए या खाना खाते हुए, दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है ना, आपने एक खाना बनाते हुए देखी है, अगली वीडियो आपने किसी डांस की वीडियो देख ली है, तीसरी वीडियो आपने किसी को खाना खाते हुए की देख ली है, जो बहुत ज़्यादा फूड को खाते हैं, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है जिन लोगों को, तो आपका माइंड क्या करेगा, एक वीडियो से खाने के बाद यानी कि दौड़ने के बाद दूसरे रूम जो है उसमें घुस जाएगा, दूसरे से जल्दी जल्दी भागते हुए तीसरे रूम में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। बिल्कुल आपके माइंड के भी ऐसे सेक्शंस हुए हुए हैं जिसमें मील है, एंटरटेनमेंट है, फिटनेस है, न्यूज़ है, गॉसिप्स है, इस तरह बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं आपके माइंड में भी ना, आपके जहन में भी, दिमाग में भी। तो आप सोचें अगर आपको ऐसे भगाया जाए एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जितने भी रूम्स बने हुए हैं घर में, तो क्या आपके साथ क्या होगा, आप थक नहीं जाएंगे, आप हाँफना शुरू कर देंगे, आप थक जाएंगे, आपको महसूस होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी शूट कर सकता है, हो सकता है कि आपको और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपको भूख लगने लग जाए, आपको गुस्सा आने लग जाए, क्योंकि जब आपके खून का एक बहाव है वो तेज़ होता है तो या तो इंसान प्रेशर का शिकार हो जाता है या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है या बहुत ज़्यादा काम डाउन नहीं होता इंसान, वो बहुत ज़्यादा पानी पीने लग जाता है, हर चीज़ डिस्टर्बेंस की तरफ चली जाती है। तो इसी तरह आप सोचें कि कुछ मिनट आप बैठकर आराम से सोचें कि अपने माइंड को आप खुद एग्जॉस्ट कर रहे हैं, मोस्ट एनर्जी जो ज़्यादातर एनर्जी है वो डोमिंग की तरफ जा रही है। व्हेन योर फिंगर्स स्वाइप, जब आपकी फिंगर्स स्वाइप करती है ना जितनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से आपका जो माइंड है ना, जो ब्रेन है आपका,
वो वाइप होता जाता है, वो ख़त्म होता जाता है जितनी तेज़ी से आप स्क्रॉलिंग करते हैं, जितनी तेज़ी से आप रील्स को देखते हैं, क्योंकि एक रील दूसरे रील से डिफरेंट है। ऐसा ही है ना, एक खाने की रील है, एक एंटरटेनमेंट की है, एक डांस की हो गई, एक न्यूज़ की हो गई, एक कोई बहुत आम एक्टिविटी बताई जा रही है, एक किसी हिस्ट्री से रिलेटेड है, एक दीन के हवाले से कुछ बात की हो रही है, एक जो AI है उससे रिलेटेड है। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है कि आपके ब्रेन को सोचने का, फोकस करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो दिस इज़ डूम स्क्रॉलिंग, इससे बचने की आपने कोशिश करनी है। आप इससे किस तरह बच सकते हैं? फास्टिंग करके। इसका सलूशन ये है कि आप अपने 12-hour फास्टिंग करें, डिजिटल फास्टिंग 12 घंटे की। ये फास्टिंग नहीं है कि आपने रोज़ा रखना है, 12 घंटे की आपने डिजिटल फास्टिंग करनी है। कैसे करनी है जनाब, ये मैं आकर आपको बताऊंगी इस ट्रैक के बाद। आप ये ट्रैक मेरे साथ एंजॉय करें, इसके बाद हम वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि मैं प्ले करने जा रही हूँ शाजिया मंजूर की आवाज़ में ये ट्रैक, और इसके बाद हम वापस आएंगे। सो Enjoy the track. I'll be right back. Keep listening FM 101. This is RJ Mahfish Sedi. Solution bataungi main aapko doom scrolling ka, so stay connected.

लिसनर्स वेलकम बैक। और जनाब आप सुन रहे हैं हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम संडे स्पेशल, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी थी। और जैसे कि कमर्शियल जो हमारे प्रोग्राम का कुछ ऐसे कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उनको भी प्ले करना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब इन सब के साथ हम वापस आ चुके हैं और अब स्टूडियोज़ में, और आपसे बात हो रही थी एक अदद सब्जेक्ट के हवाले से कि 5 ऐसी डेली की हैबिट्स, रूटीन की हैबिट्स जो डिस्ट्रॉय करी हैं हमारे ब्रेन हेल्थ को और हमारी मेमोरी को डिस्टर्ब करिए। इसमें सबसे पहले मैंने ये बताया कि मल्टीटास्किंग जो लोग होते हैं जो एक टाइम के ऊपर डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, जैसे वो लैपटॉप भी चला रहे हैं, कंप्यूटर भी चला रहे हैं, अपना मोबाइल फ़ोन भी जो है वो ऑन है उनका, इसके अलावा फ़ोन पे किसी और से बात करें, सामने कोई इंसान बैठा है उसके साथ भी बात हो रही है, तो इतने सारे काम जब आप एक टाइम के ऊपर करें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मल्टीटास्किंग का हल है कि मोनोटास्किंग कीजिए। मोनोटास्किंग इज़ दैट कि एक वक्त में सिर्फ एक काम किया जाए। सेकेंड मैंने आपके साथ शेयर किया था डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जैसे घर में डिफरेंट रूम्स होते हैं ना, ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, किचन है, बेडरूम है, और इस से रूम्स होते हैं, लिविंग रूम है, वट एवर, बहुत सारे रूम की हमने कैटेगराइज की होती है, सेक्शंस बनाए होते हैं। बिल्कुल हमारे ब्रेन में भी ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें एक एंटरटेनमेंट है, एक मील रूम है, इस तरह एक गॉसिप्स रूम है, एक जो है वो न्यूज़ रूम है, बिल्कुल इस तरह से। तो जब हम एक से दूसरे में मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं और एक से दूसरे से तीसरे से चौथे रूम में जब हम भागते भागते स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को उतनी ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि 12-आवर फास्टिंग, डिजिटल फास्टिंग ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। एक सिस्टम बना लें, कुछ ऐसी ऐप्स हैं उनको आप फॉलो करना बंद कर दें। जब आप उनको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उनको फॉलो करना बंद कर देंगे, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप उन चीज़ों से हट जाएंगे जो आपकी रूटीन में है, जिसका आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है और आपने ऐसे बस ऐप्स की हुई हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट आप उन ऐप्स को फॉलो करें जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी को, आपकी मेंटल जो एक डेवलपमेंट है उसमें आपको हेल्प आउट करती हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ किया फॉलोइंग डिजिटल जंक। फॉलोइंग डिजिटल जंक का मतलब होता है जिसमें आप जो प्रैंक्स वाली वीडियोज़ हैं, जो वीलॉग्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ के गॉसिप्स हैं, जो उनके कहीं वो आए हैं गए हैं, जो उन्होंने बात की है, जिसके हवाले से बात की है, जो बात की है उस हवाले से, जो ब्रेनलेस मीम्स हैं, आपने उनको फॉलो नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प होगी याद रखने में, आपकी मेमोरी डिस्टर्ब नहीं होगी ज़्यादातर। और इसमें साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च उन्होंने जितने भी बिलो 50 हैं, यानी 50 से नीचे वाले, 20 साल से ऊपर, 50 से नीचे वाले जितने भी लोग हैं एज के, जिसमें 20 साल से ऊपर के लोग हैं और 50 साल से नीचे वाले लोग हैं, ठीक है, उन्होंने उनके ऊपर तजर्बात किए हैं। दो उन्होंने ग्रुप्स बनाए, एक को उन्होंने कहा है कि वो रील्स देखें, वो वीडियोज़ देखें जिसमें खाना खाया जाता है, खाना बनाया जाता है, खाने से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, और दूसरा ग्रुप वो है जिसमें आपने बताया है कि आपने जो कंस्ट्रक्टिव वीडियोज़ है वो देखनी है, जो आपके माइंड को, जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखती हैं, जो आपके फिजिकल एक्टिविटी को हेल्दी करें, जो आपको सोचने के नए नए तरीके जो हैं वो दें। तो दोनों ग्रुप्स में वाजिया फ़र्क ये देखा गया है कि जो सिर्फ खाने के हवाले से वीडियोस देखते रहे, उन्होंने खाना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, वो कंज्यूम ज़्यादा करने लग गए, वो ओबेसिटी की तरफ चले गए, वो मोटापे की तरफ चले गए, क्योंकि उनके ब्रेन ने वही सुनना और वही देखना। जब आप एक चीज़ जो आप से रिलेटेड है और जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आप करने में, उस एक्टिविटी को करने में या उस काम को करने में आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और वो आप ज़्यादा कर रहे होंगे। ये आपको नहीं पता होगा कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको वो अच्छा लगने लग जाए। जैसे खाना खाने वाली एक्टिविटी है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाएंगे। ज़्यादा खाने वाला इंसान ये नहीं होता कि बहुत सेहतमंद भी होता है, वो अपनी सेहत को खुद ही टारगेट कर रहा होता है। कंटेंट ज़रूर देखें। आज हम कहते हैं ना जी हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं है, हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, हम थिंकिंग नहीं कर रहे, हम ओवर थिंकिंग की तरफ चले गए। क्यों? आप अपने दिमाग को उस कंटेंट की तरफ लेकर जाएं या उस कंटेंट के बारे में सोचें जो आपके दिमाग को डिप्लीट नहीं करता, जो डिप्लीट करने की बजाय उसको नरिश कर रहा है। ऐसे कंटेंट सोचें जो आप समझ रहे हैं कि ये वक्त ज़ाया हो रहा है, उसकी बजाय आप ऐसे पेजेस को फॉलो करें, ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे पेजेस को फॉलो करना फौरी तौर पे बंद कर दें। यकीन करें, अगर आपने 50 ऐप्स भी अपने मोबाइल में की हुई है ना, उसमें से 40 ऐप्स ऐसी होंगी जिसका आपके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होगा, जो आपने बस ऐसी रखी हुई हैं कि ये कितना है, फ़िलहाल एंटरटेनमेंट में क्या है, यहाँ पे कौन सी सेल लगी हुई है, यहाँ पे कितने कपड़े हैं, यहाँ पे कौन कौन से टॉयज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये गैजेट्स मिल रहे हैं, वो तो आप किसी भी शॉप पे जाकर भी ख़रीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
ज़रूर फ्री शिपिंग होती है जनाब, आपके घर पे चीज़ आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको ही देख कर स्क्रॉल करते रहें। आपका माइंड कितना ज़्यादा फ्री हो जाएगा जब आप 12 घंटे की डिजिटल फास्टिंग करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है लिविंग ग्लू टू अ चेयर। अब हम चेयर पे बैठे रहते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वक्त थोड़ा है, इसलिए मैं प्रोग्राम में अपने टॉपिक को ज़्यादा जो है ना वो कैटर कर रही हूँ, ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो मेरा होमवर्क है, एक जो एक मेरा टॉपिक है, वो आप तक चला भी जाए और आप उसमें से मैक्सिमम अच्छा जो है वो अपनी लाइफ में यूज़फुल तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें, जो आपको फ़ायदा दे। वेल, 7:38 हो चुके हैं मेरे डायलअप पर, तो जनाब आप अपने डायलअप को भी ठीक कर सकते हैं। 7:38 आपका मेरा साथ है जनाब सिर्फ 8 बजे तक, और 8 बजे तक बिल्कुल जनाब संडे स्पेशल में आपके प्रोग्राम जो है उसमें मैंने मैसेजेस को भी शामिल करना है, और मैसेज चलते हैं 4471 की जानी बढ़ा जाए तो वहाँ पे हमारे साथ अदीबा हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं प्रोग्राम अभी बहुत अच्छा है आपका, और हमेशा ही अच्छा होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम होता है आपका, बहुत वैल्यूड होता है और हम दिल से इसको पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया क्योंकि संडे स्पेशल। कहती क्योंकि संडे है स्पेशल इसलिए आप भी बहुत स्पेशल हैं, थैंक यू सो वेरी मच अदीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका नाम भी बहुत प्यारा है अदीबा से, थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा अगर फेसबुक के मैसेजेस की जानब देखा जाए www.facebook.com/lahore is right now and I opened the page, फिरोज़ आलम हैं वहाँ मौजूद, और कहते हैं जी बहुत सारे उन्होंने बुके जो हैं वो भेजे हैं, और कहते हैं जी ये पूरी FM 101 की टीम के लिए हैं और आपके लिए स्पेशल RJ, थैंक यू सो वेरी मच। कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, हमेशा की तरह सुपर शो नंबर 1 RJ हैं आप रेडियो स्टेशन FM 101 की, थैंक यू सो वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहते हैं जी मैं हूँ फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, हमेशा की तरह खूबसूरत और बहुत ही प्यारी आवाज़ है, थैंक यू जी, और आप भी बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे, और जिस जगह पे आप जहाँ से हमें आप सुन रहे हैं मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, और जनाब अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, सलामती दे, कोई गम ना दे, तंदरुस्ती दे आपको, और ऐसे ही आप अच्छे तरीके से अच्छे उसमें मूड में हमें सुनते रहें, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमेशा से यही दुआएँ हैं और यही रहेंगी। रज़ा चौधरी भी हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुकून पाने के लिए दूसरों को सुकून देना बहुत ज़रूरी है, और जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनते हैं, किसी के दिल को खुश करते हैं, तो अल्लाह की खास रहमतें और मेहरबानियां जो है वो हम पर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। रजा चौधरी आपका एक एक लफ्ज बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 101% ठीक है, और बताइए। और नज़ीर खोसू हैं, कहते हैं आई एम सोबतपुर बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, गुड जनाब ज़िंदगी में, कहते हैं किसी को भी बुरा मत समझे, अच्छे लोग खुशी देते हैं और बुरे लोग आपको तजर्बा देते हैं। वेल नज़ीर खोसू, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया ना, हद तो ये है कि इंसान अपनी तख्लीक में भी बेऐब है। अगर कोई अपने अमल से बुरा बन जाता है, अपने किरदार से बुरा बन जाता है, तो ये उसका अपना अमल है। हर बंदा जो दुनिया में आता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, वट एवर दो ही जेंस है ना, मेन्स एंड वेमेंस, तो जो भी बंदा इस दुनिया में आता है वो बुरा नहीं होता। हम अपने अमल से बुरे बन जाएं तो वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक, और जो 4471 पे मैसेज करें उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ चलेंगे जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब जो मैंने प्रोग्राम में शामिल करना है, और इसके बाद हम वापस आते हैं। ऑफर कॉल्स आपके हैं 111-111-9 यू पीपल ऑल हैव टू डायल राइट हियर।

0: to One Above, FM 101.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: Sunt Rei FM 101. 101.

0: ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: This is FM 101.
2: Listeners, welcome back right after a break. और जनाब आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक जो मैंने लाइनअप किया था आपके लिए, और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ करें पार्टिसिपेट, उनकी पार्टिसिपेशन को भी ऐड करते चलेंगे। फिरोज़ आलम जान हमारे साथ हैं और कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दे रही हैं, जो हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बहुत ज़रूरी है। जिंदाबाद आर्ज माफिश जैली, थैंक यू सो वेरी मच फिरोज़ आलम जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है और इन्फॉर्मेशन को वैल्यूड इन्फॉर्मेशन जो है वो समझा है। सो जनाब इसी के साथ रिमशा है हमारे साथ, उन्होंने अपने हस्बैंड राना हसन को जो है ना ट्रैक डेडिकेट करना है, तो वो भी हम ट्रैक ज़रूर डेडिकेट करेंगे। लेकिन चूंकि हम अपने टॉपिक के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं बड़ी जल्दी जल्दी जो है ना इसको रैप अप करने की कोशिश करी हूँ कि इसको मैं समेट लूँ। दरिया को कूजे में बंद करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। नॉलेज कोई भी हो बहुत वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको कूजे में बंद करना जो है वो इम्पॉर्टेंट बात होती है। फोर्थ जो पॉइंट था वो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी ट्रैक पे जाने से पहले कि लिविंग ग्लूड टू अ चेयर, चेयर के ऊपर बैठने से मुराद क्या है कि जब हम ऑफिस में सुबह बेड से उठ के बैठते हैं तो दैट मीन्स हम एक चेयर पे बैठने वाली पोजीशन में बैठे होते हैं, राइट, टांगे लटकाकर। उसके बाद हम जो है ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए कहीं भी जाते हैं तो हम बस में या गाड़ी में या बाइक पे या कहीं पे भी हम चेयर वाली पोजीशन पे बैठे होते हैं, राइट। इसके अलावा हम जब चले जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ जाके तो ऑब्वियसली हमने सीट पर ही बैठना है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला काम है तो उस पर वापस आकर फिर हमने सीट पर ही बैठना है, ठीक है। तो ये एक ग्लूड टू चेयर जो है ना ये बहुत एक मुश्किल बात है। फिर आपने वहाँ से वापस आना है तो जनाब आपने जो है फिर किसी व्हीकल के ऊपर आना है, किसी बस के ऊपर, किसी गाड़ी के ऊपर, आपने जो आपके पास गाड़ी है फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक है जो भी है आपने उसमें, या रिक्शे पे आना है, व्हाटएवर जिस पे भी आना है आपने चेयर पे बैठने वाली पोजीशन में बैठना है। इससे क्या हो रहा है ये देखिए आप। जब आप एक जगह पे स्टिक बैठे रहते हैं ना तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे आजकल आप देखें जोड़ों के पेशेंट्स जो है ना, जिसमें घुटने में दर्द है जी, कमर में दर्द है, पट्टे खिंच गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत सारी ऐसी, इवन आप मोबाइल भी जब हम रात को इस्तेमाल करें तो हमने कुछ ऐसी पोजिशन में ब्लू लाइट को देखना है जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई है, जिससे हम स्लीप प्रॉपरली नहीं ले रहे, जिससे हम स्लीप के अलावा बहुत सारे और ऐसे मसले मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मैं इनको जल्दी जल्दी रैप करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मूवमेंट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर ब्रेन। आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है, आपने वर्जिश करना, आपने फिजिकल एक्टिविटी करना, आपने खेल खेलना, जो स्पोर्ट्स होती हैं, जो गेम्स होती हैं, जो दोस्तों के साथ आप कहीं वीकेंड पे चले जाएं, आप स्पोर्ट्स कोई ज्वाइन कर लें अपने दिन के ख़त्म होने के बाद, आप देखिए आप हेल्दी फील करेंगे। बजाय ये कि आपको, आप कहते हैं आपको टाइम मिला है एक घंटा है सोने से पहले, चलो मैं अपना मोबाइल देख लेता हूँ, रेस्ट ही करना है ना, रिलैक्स ही करना है, वो रिलैक्स नहीं हो रहे आप। आप अगर अपने ब्रेन को थका रहे हैं दैट मीन्स कि आप रिलैक्स नहीं हैं, आप मजीद एग्जॉस्ट हो गए हुए हैं, आप मजीद परेशानी का शिकार हो गए हुए हैं। तो ग्लूड टू अ चेयर जो है ना वो आपने रिलीज़ करना है। कुछ वॉक को हिस्सा दें, कुछ अपनी जो जैसे एक्सरसाइज है उसको कुछ हिस्सा दें। जैसे आप, मैंने एक बड़ी अच्छी बात जो कि प्रोग्राम में पहले भी मैं डिस्कस करती हूँ, फिर मैं यही डिस्कस करूँगी कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं ना कि नमाज फजर में आपकी आँख खुले, तो आप ये मोबाइल के ऊपर अलार्म लगाना भी छोड़ दें। आप जब भी आपकी आँख खुले, 7 बजे आँख खुले, 8 बजे खुले, 9 बजे खुले, जितने मर्जी बजे आँख खुले आपकी, आप बेड के साथ उठते छोटा सा एक मैट आपने रखा हो के ऊपर आप कोई भी एक्सरसाइज, पीटी एक्सरसाइज आपको याद होगी, पीटी दैट मींस टू से कि जो स्कूल में बच्चों को करवाई जाती है, बेसिक बुनियादी एक्सरसाइजेस जो सुबह सुबह बच्चों को करवाई जाती हैं, आप वो वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने से देखिएगा कि आपका ब्रेन कैसे एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होने लग जाएगा आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बगैर अलार्म के एक्टिवेट हो जाएंगे, आप उस टाइम से पहले उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है आपके ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके ब्रेन के जो रिएक्शन हो रहे हैं केमिकल वाले रिएक्शंस जो हैं वो आपको एक्टिवेट कर देंगे उस टाइम से पहले. तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको अपना अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए, जैसे 5 बजे आपने उठना है, 4 बजे आपने उठना है, तहज्जुद के टाइम पे आपने उठना है, तहज्जुद पढ़ने या फजर पढ़ने या व्हाटएवर, जब भी आप चाहते हैं कि आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं विदाउट एनी अलार्म. और पांचवी चीज़ है बट नॉट फॉर द लीस्ट, मैं यही कहूँगी, ये तो मैंने खैर ये जो है ना चीज़ें आप लोगों के लिए लाइन अप की हैं कि 5 चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने जो मेन 5 चीज़ें हैं वो निकाली हैं. कटिंग योर स्लीप शॉर्ट. आप अपनी देखें स्लीप शॉर्ट कैसे होता है कि हम रात 2 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं और सुबह 6-7 बजे फिर उठ जाते हैं, तो ये क्या कोई नींद है प्रॉपर? फिर हम मिड नाइट मील्स खा रहे होते हैं, फिर हमें भूख लग जाती है जब हम रातों को जागते हैं, बेवजह जाग रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता, हम जाग रहे होते हैं बिला वजह, अल्लाह वास्ते हम जाग रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती यार व्हाट टू डू. स्लीप 7 to 8 hours, 7 से 8 घंटे आपने सोना है. गोल्डन विंडो जो है ना, अपने ब्रेन की गोल्डन विंडो, मालूम है आपको गोल्डन विंडो क्या होती है? कि जो रात 10 बजे खुलती है आपके ब्रेन में और जो 2 बजे होते हैं ना, रात के 2 से 3 बजे तक, ये ब्रेन के मॉलिक्यूल्स काम कर रहे होते हैं, ये प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं. यानी दिन में आपने जितने प्रॉब्लम्स देखे होते हैं, जितना स्ट्रेस लिया होता है, जितनी एंग्जाइटी आपने फेस की होती है ना पूरे दिन में, ये उस एंग्जाइटी के मॉलिक्यूल्स जो है उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं, उन हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं कि जो एंग्जाइटी के हैं, स्ट्रेस के हैं. क्यों कहते हैं कि जब आपको जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी स्ट्रेस हो, जब आपको नींद आती है ना तो वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, वो एंग्जाइटी आपके बॉडी में से चली जाती है. लेकिन जब आप उठते हैं और आपकी मेमोरी में अगर ये चीज़ दोबारा से चेरिश हो जाए, दोबारा से आपको याद आ जाए, तो फिर आप जो है ना उसी एक एंग्जाइटी मोड में, उसी एक स्ट्रेस मोड में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी का कोई प्यारा चला जाए ना, तो उसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है. लेकिन बेस्ट टाइम है कि आप 8 बजे के बाद 9 बजे बिस्तर पर जाके सो जाएं और सुबह फजर में ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाएगी. सो स्लीप 7 to 8 hours, गोल्डन विंडो को ओपन होने दें, जो कि आपकी बॉडी और ब्रेन का एक रिलेशनशिप बिल्ट अप करेगी. उस वक्त में आपकी बॉडी और ब्रेन जो है ना रिपेयर हो रहे होंगे. तो प्लीज़ कटिंग योर स्लीप शॉर्ट. और जनाब इसी के साथ जो है अगर हम डायल अप की जानब देखें तो 7:53 हो चुके हैं, 7:53 ऑन माई डायल अप राइट नाउ. और चूंकि 8 बजे तक है आपका मेरा साथ और इस साथ को आपने बनाया मेरे साथ खूबसूरत, मजीद आपके मैसेजेस को भी शामिल करूंगी, बहुत सारे मैसेजेस हैं. अब्दुल्ला हैं 4471 पर हमारे साथ, कहते हैं आप ही आपका प्रोग्राम हमेशा से सुपर डुपर गया और हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी होती है कि हमारा दिल नहीं करता कि हम आपका प्रोग्राम जो है वो किसी भी तौर पर स्किप करें. और थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा फेसबुक के मैसेजेस को भी मैंने शामिल किया है और 4471 पे जो लिसनर्स हमारे साथ हैं उनको भी मैंने शामिल किया. तमाम लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा और जो है अच्छाई, हर अच्छाई में जो है मुझे याद रखिएगा. मेरे पास तकरीबन सिर्फ 6 से 7 मिनट पीछे हैं जनाब, और इसमें मज़ीद आपके मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ. हमारे साथ कौन है मौजूद? रिमशा थी, उन्होंने राना हसन अपने हस्बैंड के लिए ट्रैक जो है वो ऑन एयर करवाया है, तो जो लास्ट ट्रैक मैं ऑन एयर करूँगी वो उनके हस्बैंड के लिए डेडिकेट करूँगी फ्रॉम FM 101 फैमिली एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम RJ महावेश दैदी. तो जनाब रिमशा के हस्बैंड राना हसन को हम ट्रैक डेडिकेट करेंगे, जो स्पेशली इस्लामाबाद से लाहौर आई हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं और उन्होंने बहुत लाइक किया. थैंक यू सो वेरी मच रिमशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे, आबाद रखे. और जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं प्रोग्राम को FM 101 को, तो उनको भी अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे. और ऐसे ही आप FM 101 को सुनते रहिए, पसंद करते रहिए FM 101 को. इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह होगी खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर होगा, आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, क्योंकि खुश रहना एक सबसे मुश्किल काम है आजकल के दौर में, लेकिन आप उसको आसान बनाएंगे, क्योंकि मोहब्बत और इज्जत दो ऐसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हैं कि अगर ये असर ना करें तो हकीम लुकमान कहते हैं कि इनकी मकदार को बढ़ा देना चाहिए. तो जनाब इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा. साइनिंग आउट RJ महावेश दैदी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे स्पेशल में 6 to 8. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music and

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: The golden days will dawn again. Everything will run smooth. People will shine again. This phase is transitory, the test of your patience. The time of fulfillment with Herald, the nation. In the name of soldiers who serve the nation, your sacrifices will reunite the nation. You will always find your sisters leading with you. The feeling of loneliness will never haunt you. My soldier, my brother, never surrender, never surrender. Victory is ours. My soldier, my brother, victory is ours. Listen, Voice of Soldier every Friday, Saturday and Sunday from 9 p.m. to 11 p.m.
1: मैं अपने घर को अपने प्यारों वफा के सब सुहाने इस्तारों को भुलाकर अपनी मट्टी से किया वादा निभा चुका हूँ। मैं वतन पर अपनी जान बार चुका हूँ। मेरे वतन के लोगों, अब लाजिम है तुम पर भी गवाही दो मेरी तुमसे मोहब्बत की, वतन से इश्क की, मेरे खुदा से किए अहद की, मेरी हक पर शहादत की, दीन की हुर्मत का मैं वारिस हूँ। मैं वतन की हुर्मत

कुछ और समझ के आया जो मैं खुद जरा इमोशनल सा हो गया था, क्योंकि एक शहीद हमारी फैमिली में भी हैं जिन्होंने अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान

जी वक्त को चाहता है इस वक्त 10:22 और आपका मेरा साथ रहेगा श्रेगा में ठीक रात के 12 बजे तक रहेगा। हम शब गप में भी आप लोगों को हम वेलकम करेंगे एक पैट्रियाटिक नंबर, उसके बाद वापस आते हैं। मैं भी थोड़ा सा कोशिश करूँ कि नॉर्मल हो जाऊँ, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है सामने सॉन्ग के बाद और एक टॉपिक के साथ। आप लोगों को खुश आमदीद कहेंगे।

दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। खान साहब की मैंने बहुत सारी जो है वो गजलें, सॉन्ग्स और उनके आइटम्स जो है प्ले किए, लेकिन ये कुछ लाइव परफॉर्मेंसेज हैं। मुझे कोशिश रहेगी कि आप हमारा इस साल बहुत अच्छे से गुजरे। टॉपिक आपको हर प्रोग्राम का बताए देते हैं कि प्रोग्राम में आज हम गपशप जो लगाएंगे वो किस चीज़ पे लगाएंगे, और वो चीज़ ये है कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक है। शौक वॉचेज, रिंग, परफ्यूम या पैसा, आप कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं।

मैसेज यार सच में मुझे उस मैसेज को देख के ना मुझे एक कह कहा लगाने का दिल जरूर किया, लेकिन इतनी वजह से खुशी है नहीं है। मैं आसिया हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच जी। और अनु कह दी कि भाई मैं छोटी सी थी और आप इन टॉपिक्स पे शो करते थे और मैं बड़ी हो गई अभी भी टॉपिक्स पे। अच्छा जी माशाल्लाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी मुस्तकिल मिजाजी पे। तो मैं आप लोगों से कहा करता हूँ कि मुझे आप टॉपिक जो है वो सजेस्ट करें। अब इतने सालों में 10 से 12 साल में और वीक में एक से दो अगर शोज होंगे तो टॉपिक्स भी खत्म हो जाएंगे, और इतने दिमाग की अब क्या करें, अब कहाँ से इतने टॉपिक्स लेके। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो ज़रूर जी मैं आप लोगों के नाम के साथ के ये टॉपिक जो है मुझे सजेस्ट करने में या शेयर करने में मेरी मदद की है तो मैं ज़रूर आप लोगों के नाम भी शामिल किया करूँगा। ओके जी, आप लोगों के टॉपिक मैंने शेयर कर दिया है। टॉपिक ये है कि किस चीज़ का ज़्यादा आपका शौक़ है जी, किस चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं या स्पेंड करते हैं, वॉचेस, रिंग, परफ्यूम या कि फिर कोई बड़ी चीज़ भी खरीद सकते हैं आप, कोई जहाज़ वगैरह। जहाज़

जी हम लोगों की कॉल्स शामिल करेंगे 0511111001, और टॉपिक थीम यही होता है, इस वजह से ही ऐसे रखना पड़ता है टॉपिक। फातिमा सब मौजूद हैं जी, और भाई आज का टॉपिक आप लोगों से पूछिए कि उनकी फैंटेसी क्या है, और आगे लिखती हैं कि बाकी आई हेट यू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अब हम ना थोड़ी ना लोगों को यहाँ पे खुश करने के लिए बैठे हुए हैं।

0: लोकांतों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। 0513110101 देखेंगे जी कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से?
1: मैं मुनीब बात कर रहा हूं रावलपिंडी से।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: जी मैं ठीक, आप सुनाएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस चीज का ज्यादा शौक है आपको?
1: अच्छा, मैं वैसे तो मैं फ्रीलांसर हूं और मेरे पास अपनी मॉडिफाइड गाड़ी है, तो मैं उसकी मेंटेनेंस पे ही ज्यादा खर्च करता हूं।
0: उसकी मेंटेनेंस, कौन सी गाड़ी रखी हुई आपने?
1: होंडा सिविक रिबॉन।
0: अच्छा रिबॉन, ठीक हो गया
1: जी।
0: सही, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: आप अपना बताएं, आप किस पे ज्यादा खर्च करते हैं?
0: पैसे खर्च करने का टाइम ही नहीं मिलता।
1: अच्छा,
0: मोस्टली लेकिन मैं परफ्यूम और वॉचेस, घड़ियां जो हैं वो उनका थोड़ा ज़्यादा है, और बस उसी की तरफ ज़्यादा देर रुझान रहते हैं।
1: ये मैंने पहली दफ़ा आपकी शो में कॉल की है, आज ही मैंने ट्यून किया और कॉल भी मिल गई आज ही।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
1: वैसे मैं पिंडी में रहता हूँ, आप आपसे मुलाकात करनी हो।
0: बस ये फोन पे मुलाकात हो सकती हो?
1: रियल में?
0: रियल में टाइम ही नहीं होता इतना,
1: फिर भी इस्लामाबाद में रहते हैं?
0: जी जी इस्लामाबाद में रहते हैं।
1: कौन सी जगह?
0: गली नंबर बता दूं?
1: सेक्टर बता दें, अच्छा होगा।
0: बता देंगे बता देंगे, ठीक है, आप सुनते रहें इंशाल्लाह। अच्छा बता देंगे, ठीक है,
1: कब बताएंगे?
0: आप शो सुने बताएंगे इंशाल्लाह,
1: अभी बता दे।
0: चले आप सुने, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और ढूंढे आप सब लोग,
2: हम पे भी होगी मेहरबान सारी उम्र साथ।
0: अब तो वक्त हुआ चाहता है जी के खुद को देखे हुए पे।

0: जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, इस शहर से दूर कुटिया हमने बनाई है, और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है। 0511111 आप लोगों की कॉल्स शामिल करेंगे और देखेंगे कौन कहाँ से है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
1: लेकिन ਜਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ
0: ਬਸ ਜੀ,
1: ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਘਰ ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ
0: ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ?
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸ਼ੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ।
0: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
1: ਪੈਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ।
0: ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ।
1: ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਚੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ।
0: ਅੱਛਾ ਚਲੋ,
1: ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ। ਬਸ
0: ਕੋਈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਸ਼ੁਲਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ?
1: ਉਹ ਖਾਦਵਾ ਦੇਣਾ ਬਰਗਰ ਨਾਲ ਸਵਾਰਮਾ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਚਾਹ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਸ।
0: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।
1: ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। 0511111001 ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਸੇ?
2: ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਰਿਮਸ਼ਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ।
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਕਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ?
2: टॉपिक के हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखो मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा आ भी जाते हैं, मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा नहीं खर्च करती, बहुत कम होता है, मैं ज्यादातर दूसरों पे ही खर्च करती हूँ।
0: अच्छा, दूसरों पे खर्च?
2: मेरा अगर खाने को मन करता है या तो मैं अपनी कोई चटपटी चीज मंगवाती हूँ उन पैसों से, या टोमेटो खाती हूँ, या फिर कपड़े वगैरह खरीदती हूँ, बहुत कम होता है, लेकिन दूसरों पे ज्यादा खर्च करती हूँ। अगर दूसरों को चाहिए होता है तो मैं उनको दे देती हूँ जरूरत के वक्त।
0: तो वापस मिलते हैं फिर नहीं मिलते?
2: हाँ, अगर अपने बंदे को दो तो कभी वापस नहीं मिलेंगे, अगर दूसरों को दे दो तो मिल ही जाएंगे रो पीट के।
0: अब किसी न किसी को मारना पड़ता है अपने पैसे वो करने के लिए भी ना?
2: बिल्कुल, वो कहते हैं ना अगर बंदे को दो ना तो फिर वो आपको फिर पैसे वापस नहीं मिलते, भूल जाए। अगर देना चाहे तो वो दे भी सकते हैं, नियत उनकी साफ हो पैसे देने की वापस।
0: ऐसी है।
2: कभी आपने भी ऐसा किया? अभी आपने कभी अपनी वाइफ से पैसे लिए उनको वापस नहीं किया?
0: नहीं जी, कभी ऐसा नहीं हुआ, देने ही पड़ते हैं।
2: कभी उधारी नहीं की आपने?
0: नहीं नहीं नहीं, उधार वाला काम भी कोई नहीं है।
2: अच्छा, यानी वो भी आपसे नहीं लेती?
0: अड्डे चंगे नहीं है।
2: अच्छा माशाल्लाह। और बताइए भाई, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है अभी?
0: शुक्र अल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम तो स्टूडियो में एसी लगा हुआ है, तो बाहर का मौसम भी शाम को अच्छा हो जाता है,
2: क्योंकि लाहौर में तो 3 दिन से बारिश हो रही है, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है।
0: अच्छा ठीक है जी, आप मौसम को एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। 0511111001। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से?
3: यूसुफ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
0: शुक्र अल्लाह का। कौन कहां से?
3: शेरयार बात कर रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी से सर।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं,
3: अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं? ठीक हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से?
3: टॉपिक आपने कहा है कि जी पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो क्या करेंगे?
0: पैसे किस चीज पे ज्यादा स्पेंड करते हैं? अगर कोई चीज खरीदनी हो, वॉचेस, रिंग, परफ्यूम, वॉलेट, क्या चीज ज्यादा, मतलब कोई कड़े छड़े कोई?
3: बहुते आजम ते मैं ते फिर ज्यादा खा लेना, फिर रात नु पिज्जे शवारमे खा लेना ते जा परफ्यूम लेना।
0: ठीक हो गया, परफ्यूम का आपको भी ज्यादा शौक है?
3: हाँ जी, परफ्यूम का शौक है मुझे, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी मेरे अभी जहाँ पे ड्यूटी अभी पिंडी में कर रहा हूँ, मेरे अलमारी में कम से कम 8 परफ्यूम पड़े हुए हैं।
0: अच्छा, खाली बोतल खाली या भरी है?
3: नहीं नहीं भाजी, मेरे पास मेरे को भरिया होनिया।
0: अच्छा,
3: घट वाला मतलब शुक्र अल्लाह परफ्यूम का शौक है।
0: अच्छा ठीक है, कोई चलो ठीक है, ओके
3: जी, ठीक है,
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और एक तो तबीयत बड़ी ही अजीब सी जो है वो गला बिल्कुल चौक जो जैसे कहते हैं ना वो होने शुरू हो जाता है समटाइम। ओके जी, इस वक्त मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा दोस्त और अल्लाह ताला अमजद को सेहत अता फरमाए और सुन रहा है, और अमजद की वालदा भी सुन रही हैं, वालद साहब भी सुन रहे हैं, शाहिद अहमद और मोहम्मद भाई भी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, सारे ही हैं। हमाद और कल काफ़ी दिनों बाद जो है अब अमजद से मिलने का मुझे मौका मिला, और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया कि सब लोग जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए और इंशाल्लाह वो दोबारा ऐसे ही एनर्जी के साथ उसी ही जौक के साथ और उसी चाहत के साथ हमें मिले जैसे कि हमेशा वो मुझसे मिला करता है। बहुत सारी दुआएं जी अमजद के लिए और अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए।

मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ, और रिसेंटली भी ऐसे में तस्करा कर रहा था कि लाइफ में 4 से 5 मेरे ऐसे इंसिडेंट हैं जिन पे मैं शायद कभी उन चीज़ों ने ऐसे तोड़ के रख दिया कि जब भी वो चीज़ें मैं सोचता हूँ ना तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए।

और अमजद के लिए बहुत सी दुआएं, और उसके साथ साथ मेरे दोस्त आपने हिम्मत नहीं हारनी, और क्योंकि जब तक आप अपनी विल पावर ख़ुद नहीं शो करते हैं या उस चीज़ के साथ, और अल्लाह ताला की तरफ से एक सिलसिला है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं किसी पे भी उसकी सख्त से ज़्यादा जो है वो बोझ नहीं डालता, जितना वो सह सकता है मैं उतना ही बोझ उस पर, और इंशाल्लाह आप इस चीज़ के साथ वापस जो है वो आएंगे, और इंशाल्लाह आप ज़रूर सेहतमंद होंगे, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमेशा, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।

जी वक्त कुछ आता है 10:56 आपका मेरा सांस रहेगा इस पर गया मैं ठीक रात के 12 बजे तक। स्पेशली अगर आप ड्राइव करते हैं मुझे सुन रहे हैं तो ड्राइव वेरी केयरफुली क्योंकि आपके जिंदगी के साथ बहुत खूबसूरत जिंदगियां जुड़ी हुई हैं।

लेकिन कुछ लोगों के नजदीक खुशी शायद किसी को बेसुकून रखने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए।

बस आपकी जो जिंदगी है वो अच्छी होनी चाहिए, बाकी जाए सब। बस आपकी जो जिंदगी है वो अच्छी होनी चाहिए, बाकी जाए सब।

अरसे के बाद आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। कैसे हैं आप? और शौच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, उसने समाप्त।

0: जी लोग पूछ रहे थे कि जी आपकी आईडी फेसबुक की क्या है, तो क्या करना है, आपने देख के हमें क्या करना, हम खुद से तंग है, आपने हमें देख के क्या कर लेना है।
1: But I'm not a superman.
0: I'm common man.

अब ये पता नहीं मेरे पड़ोस से कोई, मेरे पड़ोसी है, पड़ोसन है या कौन है, एक मैसेज मुझे हर शो में आता है कि मैं आपके बस गली में पता नहीं रहते हैं। अच्छा जी, अच्छी बात है, रहते हैं। हम इंसान हैं, हमने भी जमीन पे ही रहना है।

0: जी मजीद आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे 0511100107। आप ज्यादा क्या स्पेंड, कहाँ पे स्पेंड करती हैं, वॉचेस, रिंग्स, परफ्यूम, कुछ भी ऐसा क्या खरीद लेते हैं? और बचपन की मुझे कुछ ऐसी यादें हैं कि मैं अपनी वालदा के साथ जब हम उस वक्त अमरी में रह रहे थे और जब भी मार्केट जाना तो एक कैसेट में लाजमी खरीदा। उस वक्त तो कैसेट्स का दौर हुआ करता था, तो 90s, हम भी पुराने हैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, क्या है सुबह कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बोल रहे, कहाँ से? कैसी आप? ठीक है, पानी छाने तो नहीं चढ़े होते?
1: नहीं, कोई नहीं आया है क्या?
0: अच्छा ठीक है, तो कहाँ जो है आप ज्यादा स्पेंड करती हैं, क्या चीज जो है उसका शौक है आपको?
1: मुझे परफ्यूम्स का।
0: ओके ठीक हो गया, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: इतनी शोर से नहीं बोला, कॉल अटेंड कर लिया करें,
0: जब मैं वैसे बताता हूँ कि मैं हर वक्त जो है कॉल्स पिक नहीं करता 10:30 के बाद, और 11 के बाद जब मैं फेसबुक के कमेंट शामिल करता हूँ उसके बाद मैं लाइव कॉल्स जो है वो शामिल करता हूँ। मैं पहले अनाउंस इसीलिए कर देता हूँ कि अब जो है वो आप कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है
1: ठीक है
0: ठीक है,
1: पता चल गया ना आपका
0: का। जी, जी, जी जी जी बिल्कुल हाँ, वो ऐसे ही फिर वो कॉल्स करके ना अपने आप को लोग हलकान करते हैं, और ऑफ देयर मैं कॉल शामिल नहीं करता हूँ, तो इस वजह से कोशिश यही होती है कि मैं ऑन एयर ही बात कर लूँ।
1: नहीं अच्छा, पता नहीं मुझे नहीं पता था कि आप 10:30
0: के बाद लेते हैं। जी जी जी
1: जी,
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। 0511100101 और 9002540। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
2: जी लाहौर से हम बात कर रहे हैं।
0: कैसे हैं आप? ठीक
2: आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है जी।
2: पहली दफा कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में,
0: इसलिए बहुत जोर की लगी है
2: जी, और बस मेरी ख्वाहिश थी, मेरे पिछली दफा भी कॉल नहीं लगी।
0: अच्छा,
2: टॉपिक क्या रहता भाई?
0: टॉपिक है प्रोग्राम में कि आप पैसा कहाँ ज्यादा स्पेंड करते हैं, किस चीज पे, वॉचेस, रिंग्स, परफ्यूम, फीमेल्स या बैंगल्स का भी शौक होगा, मेहंदी का भी होगा, तो ज्वेलरी वगैरह, ड्रेसेस,
2: कुछ भी नहीं?
0: कुछ भी नहीं,
2: किसी चीज का भी कोई शौक है?
0: मतलब तो आधे कैलेंडर दे कोई 10वीं सदी चल रही है।
2: नहीं भाई, बस वो शौक उनकी बात होती है ना, किसी को होता है यूज करने का या कुछ ऐसी ब्रांड चीज लेने का, तो मुझे तो किसी चीज का शौक नहीं, बस जो मिल जाए बस।
0: मतलब घर वाले सुखी हैं आपसे?
2: जी
0: घर वाले सुखी हैं, मैंने कहा आपसे।
2: हाँ बस घर वालों पे छोड़ना है, वो जो लेकर दे दे बस, आमीन कर ले।
0: वाह जी वाह, मतलब कहाँ होते हैं ऐसे लोग, कहाँ होते हैं
2: जी? मैंने कभी शॉपिंग नहीं की, वो घर वाले करते।
0: अच्छा चले सही है ठीक, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
2: माशाल्लाह आपका हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत अच्छा।
0: थैंक यू सो मच।
2: सुनने वालों को सलाम अनिला, आपको अब भाई वो एक सॉन्ग आप प्ले कर देंगे?
0: कोशिश करेंगे जी, प्रॉमिस नहीं करेंगे, बता दें आप
2: जी। वो हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग है, उसका नाम हैदर है, उसके इश्क के उनके इश्क के समंदर में बहते रहेंगे। अगर आप भाई आप ही जाओ तो थोड़ा सा गुनगुना दूं।
0: क्यों अड्डे माड़े हालात आगे मेरे थे
2: क्या मतलब?
0: मैं इसलिए कह रहा था, मुझे पता था आपका बैलेंस जो है वो खत्म होने वाला। कोई बात नहीं जी, ऐसा हो तो होता है, ऐसा तो होता है, जब आप कॉल करते हैं तो कम से कम इतना बैलेंस होना चाहिए कि कहते हैं कितना महंगा है जी, मैं महंगा बोल रहे हैं कितना कुछ महंगा है, मेरे मोबाइल दे विच टोटल जड़े ने फिर 12 बेने तो देख लो मैं कितना कुछ महंगा। 17 आपके मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 तक। एंड जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ।

0: मुख जी, ये प्रोग्राम जो है वो एफ एम 101 इस्लामाबाद से नहीं हो रहा, ठीक है ना? ये कहाँ से हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा आप क्यों हंस रहे हैं वहाँ से? नहीं ऐसे ना हंसे, सच में मेरा भी हंसा निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
0: अल्लाह खैर जी। कौन कहाँ से?
1: हेलो
0: जी। जी
1: जी मैं लाहौर से सारिता बात कर रही हूँ।
0: कैसी हैं आप? ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम।
1: और आपका शो जबरदस्त।
0: अच्छा
1: जब शो शुरू हुआ था तो कॉल करी, आप शुक्र मिल गई।
0: अच्छा किस वक्त स्टार्ट हुआ था मेरा शो?
1: 10 बजे के बाद।
0: 10 बजे के बाद? काफी बाद।
1: हाँ जी, तो तब से लेके मैं कर रही हूँ कॉल, तो कॉल जा भी रही है लेकिन आप यस नहीं कर रहे थे, अब आपने यस किया।
0: यस किया? यस। अच्छा चलो जी, यस हो गई आपकी कॉल, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी मैं शॉपिंग ज्यादा करती हूँ, मेरे पास पैसे आ जाना टिकते नहीं है, यानी कि चाहे एक दिन में चाहे हफ्ते में चाहे महीने 2-3 दिनों में ना मैं ऐसे बिल्कुल फारिग हो जाती हूँ लगा के, और सारे मुझे कहते तुम पैसे बहुत जल्दी लगा देती हो।
0: तो सबसे ज्यादा पैसे कितने लगाए? 4,000, 5,000, कितने? 3 दिन में कितने पैसे आपने खर्च किए?
1: मेरे पास चाहे 1,000 रुपया है चाहे 10,000 है, 2 दिनों में फारिग हो जाती हूँ।
0: 10,000 में क्या आता है? हम तो लंडे में चले जाएं तो 10,000 वहाँ लगा के आ जाते
1: हैं। नहीं लंडे में तो नहीं जाती, लेकिन घर की चीजें ले आती हूँ, मेकअप अपने ज्यादा, कपड़े शॉपिंग मैचिंग ये ज्यादा कर लेती।
0: अच्छा, मैंने लंडे का नाम लिया ना, मेरा दोस्त जो है ना, मुझे यकीन है अगर वो सुन रहे ना तो वो जरूर हंसा होगा।
1: नहीं लंडे में नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती।
0: वो अमीरों वाला लंडा है वहाँ पे, कौन सा वो गरीबों वाला लंडा है?
1: नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लंडा भी अब सुना बहुत महंगा हो गया। हाँ। लेकिन लंडा मैं यूज नहीं करती, मैं शॉप से लेती हूँ कपड़े चीजें वगैरह ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो लंडे के नहीं मैं लेती।
0: अच्छा ठीक हो गया, सही है।
1: और मैं ज्यादा परफ्यूम भी लेती हूँ, परफ्यूम हो गई मैचिंग, जैसे उतने का है सब कहते हैं सूट नहीं जितने की तुम ऊपर मैचिंग कर लेती हो। मेकअप, मेकअप का बहुत शौक है, मैं मेकअप लेती हूँ और घर की चीज को पसंद आ जाती है, जैसे घर की डेकोरेशन, मैं इन चीजों में ज्यादा खुश रहती हूँ।
0: मतलब ये दर्ज, ये सारी चीजें,
1: पर्दे होते हैं घर, वो दीवार पे शीट लगाते हैं, और
0: जी जी पता चल गया,
1: ठीक हो गया,
0: सही हो गए, ठीक हो गए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नहीं बिल्कुल नहीं,
1: चलिए अपने पसंद का लगा
0: दे जी, मैं अपने पसंद का। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। शुक्र है बाजी ने किला नहीं गिनना है बेच।

कि तुम मेरे मर्ज की तशखीस में नाकाम रहे। दर्द तो दिल के करीब था ही नहीं, दर्द तो रू लिए बैठी थी मेरे अंदर, तुम ना कर पाओगे ऐ दोस्त इलाज गमे रूह। बस ये साबित हुआ मौसम के लाइलाज हो तुम।

फौजी शेख हमारे साथ मौजूद है शो नाइस में। सेविंग ज्यादा करती हूँ, शॉपिंग भी करती हूँ, पर ज्यादा नहीं करती। जुना शहजादी हमारे साथ मौजूद है और मैं शॉपिंग करती हूँ लेकिन अपने लिए नहीं।

बस जी, वो कहती हैं कि मंजूरा शहजादी कहती हैं कि मैं शॉपिंग अपने लिए नहीं करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ। उनको वॉचेस पसंद हैं, परफ्यूम उनको पसंद है, तो सिर्फ उनके लिए शॉपिंग करती हूँ।

तुमको हमारी चाल के चेतक का नहीं पता। तुम फंस गए हो जाल में ये तक नहीं पता। ये इश्क भला क्या करोगे तुम? तुमको तो प्यार की अभी पे तक का नहीं पता। दुख दर्द में निभाओगे तुम साथ किस तरह? तुमको हमारे हाल की हे तक नहीं पता। रखवाली और पहरे में कुछ फर्क होता है, इस फर्क की तुम ऐसों को फे तक नहीं पता। हमको तेरे मिजाज की पतझड़ ने खा लिया, हमको किसी बहार की बे तक नहीं पता। क्या खाक समझोगे मेरी आंखों का खालीपन? क्या खाक समझोगे मेरी आंख का खालीपन? इन रत जगों की तुमको तो रे तक नहीं पता। हम मुब्तलाए इश्क थे सो मुब्तला रहे, हम मुब्तलाए इश्क थे सो मुब्तला रहे। हमको किसी फरार की फे तक नहीं पता।

कि वो जिसकी सांस पे तहरीर थी हयात मेरी, वो जिसकी सांस पे तहरीर थी हयात मेरी, उसी का हुक्म है अब राबता नहीं करना।

कि ऐसा लोग मुसाफिर दुनिया दे, एक पैर के थाएं दूजे पैर के थाएं। आज कहीं जाते कल कहीं जाते, इतवार के थाएं सोमवार के थाएं। होश हवास थे दिल काबिज, साढ़े पैर के थाएं इंतजार के थाएं। साड़ी शाकर केड़ी जिंदगी है, आसा आपके थाएं साडा यार के थाएं।

कि लोग समझते हैं कि हमने बस सुना और भूल गए। उन्हें क्या खबर, कुछ बातें कानों से गुजर कर सीधा दिल में उतर जाती हैं। लफ्ज शायद भूल जाए मगर लहजा नहीं भूलता। इंसान इसलिए हर बात का जवाब नहीं देते, बस खामोश हो जाते हैं। और जो कहते हैं ना कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तो उन्हें बताएं कि इन दोनों कानों के दरमियान दिमाग आता है, जहां बात और लहजा दोनों ठहर जाते हैं। नहीं, अगर आपने किसी से कोई इस तरह बात करनी है या उसके रिस्पॉन्स करना है तो खामोशी बेहतर है कि आप इतना बोलें कि सुनने वाले को सब्र आ जाए।

कि रोचना और मनाना जिंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल इतना रहे कि नाराजगी जुबान तक रहे, दिल में इज्जत और प्यार बाकी रहना चाहिए।

कि मैंने आज फिर बैठ के तन्हाई में उजड़े दिल उदास आंखों का हिसाब लिखा है। हर ख्वाब का जिक्र जो तेरे साथ देखा, हर उस जख्म पे खामोशी का अजाब लिखा है। जो लफ्ज लबों तक आके इजहार ना बन सके, उन्हें अश्कों की जुबान में बेनकाब लिखा है। ना कोई गिला ना शिकायत का बाब खोला, फकत अपने नसीबों को खराब लिखा है। मैं हंसता रहा हर महफिल में, मगर दिल ने हर मुस्कुराहट को सराब लिखा है। किसी वक्त आ पहुंचा है कि आप लोगों से इजाजत

ये कोशिश ये कावश थे मेरी तरफ से, और अगर कोई भी बात आपको नागवार गुजरी हो या आपके समखराशी का सबब बनी हो तो माजरत चाहूँगा। इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, लेकिन कतन मकसद नहीं होता कि आप लोग हर्ट हों। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए अज़म के साथ, और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, ये आपने साबित करके दिखाने दो ना, है वैसे आप मेमोरी। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है ये तन्हाई, ये मालूम था हमें। करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें। आ जाना, मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से अदावत हम देते हैं तुम्हें।

प्रोग्राम है जी 101 इंटरनेशनल और हुआ करती हैं आपसे बातें, आपकी बातें कुछ, मेरी बेरब्त बातें, आपका खूबसूरत साथ और कुछ नज़में, कुछ गज़लें, कुछ शायर प्रोग्राम की जीनत बनते हैं। यूं शब का ये पहर काटने की काबिश हुआ करती है। सात सितंबर 2026 की शब है, 12 बजकर हुआ चाहते हैं 21 मिनट साथ रहेगा आपका और मेरा 2 बजे तक का। उसे कहना सितंबर आ गया है और जरूरी जरूरी नहीं होता समय को दोहराना। कहां पे ये लिखा है सितंबर के, सितंबर को सितंबर होना होता है, सितंबर को सितंबर होना होता है। उसे कहना बदलते मौसमों का शाखसाना भी नई ऋतुओं का पयंबर हो तो सकता है। तो जनाब ऐसी भी शायरी हो जाती है जो कि महीनों पे हुआ करती है, मौसमों पे तो सुनी थी और होती भी है। इंसान अपने तखयल को कोई भी रंग दे सकता है हुजूर। तो जनाब शिरकत के जराए आपको कुछ बताता चलूं, आपने प्रोग्राम में शिरकत करनी है टेलीफोन कॉल्स के जरिए, एसएमएस के जरिए और फेसबुक के जरिए। एसएमएस पहुंचाइएगा 4471 पर, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने 101 लिखना है, एक स्पेस के बाद अपना पैगाम, अपने नाम और जगह के नाम के साथ इस मुकम्मल पैगाम को 4471 यानी 4471 पर भेजिएगा। 9202540 पर आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी, नंबर बाद में दोबारा बताऊंगा। लेकिन आप फेसबुक पर जाइएगा और FM 101 चैनल पाकिस्तान सर्च कीजिएगा। वेब एड्रेस है facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। स्टेटस अपडेट हुआ जनाब कुछ देर पहले, आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से, उस पर आपके कमेंट्स होंगे वो प्रोग्राम में शामिल करूंगा। यूं ये महफिल सजी रहेगी जनाब, आपसे कुछ अच्छी बातों की उम्मीद रहेगी और मेरा साथ देते रहिएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा।

अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा, एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। और तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूं, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस, बस एक कर लो जो इस्तखारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा।

जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। और इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, मैं हूं कि कोई और है दुनिया है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखो ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखो ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानू, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। और हर बज्म में मौजूए सुखन दिल जदगा का, अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। और वो वक्त ना आए कि दिले इजार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो। आबाद हम आशुफ्ता सरों से नहीं मक्तल, ये रस्म अभी शहर में जिंदा है कि तुम हो। और ऐ जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे थी, हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, मैं हूं कि कोई और है दुनिया है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम

दर्द दिल आज भी है, जोश वफा आज भी है। दर्द दिल आज भी है, जोश वफा आज भी है। जख्म खाने का मोहब्बत में मजा आज भी है। गर्मी इश्क निगाहों में नहीं है न सही, मुस्कुराती हुई आंखों में हया आज भी है। और हुस्न पाबंद कफस, इश्क असीर आलाम, जिंदगी जुर्म मोहब्बत की सजा आज भी है। और हसरतें जीस्त का सरमाया बनी जाती हैं, हसरतें जीस्त का सरमाया बनी जाती हैं। सीना इश्क पे वो मुश्क जफा आज भी है। दामने सब्र के हर तार से उठता है धुआं, और हर जख्म पे हंगामा उठा आज भी है। अपने आलाम व मसाइब का वही दरमा है, अपने आलाम व मसाइब का वही दरमा है। दर्द का हद से गुजरना ही दवा आज भी है। और मीरो गालिब के जमाने से नए दौर तलक, शायर हिंद गिरफ्तार बला आज भी है। अपने आलाम व मसाइब का वही दरमा है, दर्द का हद से गुजरना ही दवा आज भी है। गर्मी इश्क निगाहों में नहीं है न सही, मुस्कुराती हुई आंखों में हया आज भी है।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब एफ एम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी समातों की नज़र कर रहा हूं। टेलीफोन लाइंस अब आपके लिए खोल दी गई हैं 920-2540-9202540, इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब अली साहिब, मैं अंसारी बोल रहा हूँ हैदराबाद।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब?
1: करम मेरे मौला का, आप खैरियत से हैं?
0: मैं अच्छा हूँ हुजूर, अच्छा हूँ। क्या फरमाएंगे
1: सर? आप इजाजत देंगे तो मुगले नगमा सुनूंगा, पर शायरी करूंगा। जैसे भी आप
0: शायरी करें जी, शायरी करें।
1: जाने वाली चीज का हम क्या करें, जाने वाली चीज को हम क्या करें, दिया तुमने लिया हम क्या करें।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: है लड़ाई आज हुस्नो इश्क में।
0: अच्छा, हम नवाई आज
1: है लड़ाई आज हुस्नो इश्क में।
0: ठीक है,
1: देखिए वो क्या करें हम क्या करें।
0: ठीक है,
1: जाने वाली चीज का हम क्या करें।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे।
1: बख्श देना प्यार के गुस्ताखियां।
0: ठीक है,
1: दिल है काबू में नहीं हम क्या करें,
0: क्या करें। बिल्कुल
1: जाने वाली चीज का गम क्या करें।
0: बिल्कुल ठीक बात है।
1: अपने ही उनसे नहीं मिलती निजात, और उससे जिक्र आलम क्या करें।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: जाने वाली चीज का गम क्या करें, शाह साहब ने लिया हमने दिया हम क्या करें।
0: अच्छा, पूरी बात करनी चाहिए। सलामत रहे, आबाद रहे, खुश रहे, बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह
0: ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम अस्सलाम, अतीर परवीन आसिफ बोल रही हूँ कराची से।
0: ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
2: मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज थोड़े से लेट हुए आप, दिल धक धक हुआ।
0: हाँ जी, हाँ जी।
2: ना जाते हैं आप ना 11:05, 11:07,
0: 12:12, 12:12, 12:12।
2: आज जब 12:15 बजे तो मैंने कहा थोड़ी सी देर और इंतजार करते, थोड़ी देर और आप आ गए, आपको बैकग्राउंड क्लियर हुआ। मैंने कहा आ गए आ गए आ गए, अल्लाह का शुक्र है।
0: सही,
2: और ठीक ठाक है आप?
0: अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ।
2: बड़ी अच्छी से आपने बोल के शुरू किया प्रोग्राम, अच्छी लगी।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: लेकिन शाकिर साहिबा की खातिर चला गया
0: प्यार की बाजी में, हारूं तो तुझे पाऊं, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हालों में तेरी तेरी।
0: ऐसे ही है।
2: अच्छा, मैं आते सुनाती हूँ आपको। जो ख्याल थे ना कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो ख्याल थे ना कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो मोहब्बतों की एहसास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग मेरे हैं हम सफर। मुझे हर तरह से जो राज थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मुझे लम्हा भर की रिफाकतों के शराब और सताएंगे। मुझे लम्हा भर की रिफाकतों के शराब और सताएंगे। मेरी उम्र भर की जो प्यास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए।
0: बहुत अच्छा।
2: ये ख्याल सारे हैं आरजी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। गुले आरजू की जो बास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए।
0: बहुत अच्छा।
2: जिन्हें कर सका ना कबूल में, वो शरीके राह सफर हुए। जो मेरी तलब मेरी आस थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए।
0: बहुत अच्छा।
2: मेरी धड़कनों के करीब थे, मेरी चाह थे, मेरा ख्वाब थे। वो जो रोज और शब मेरे पास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए।
0: बहुत अच्छा।
2: जो ख्याल थे ना ख्याल थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है जनाब।
0: ऐसा ही है।
2: खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, खूबसूरत शायरी, आपके नगमात का भी चुनाव बहुत अच्छा होता है।
0: बहुत अच्छा।
2: जीते रहिए, खुश रहिए, आते रहिए,
0: सलामत
2: रहिए, जिंदगी दे, सेहत दे, आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा रखे। सब सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और ढेर दुआएं। अल्लाह हाफिज़। आते जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़।

ये जो नफरतें हैं अपने अंदर जो लोग रखते हैं वो बड़े शातिर हुआ करते हैं। उनको यूं लगता है कि उन्होंने संभाल रखा है कोई ऐसा हथियार जो किसी खास वक्त पर वो इस्तेमाल करेंगे और कर भी जाया करते हैं, फायदा भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत वालों का नफा कहां से आता है ये उनको मालूम नहीं होता। ये तो धीरे धीरे जनाब जब उगदे खुलते चले जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। मोहब्बत करने वाले बड़े बेजरर भी हुआ करते हैं और बड़े बेलौस भी हुआ करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता दूरी से या कुर्बत से। अब दूर ही रह या मिल सजना, तुझे सौंप दिया है दिल सजना, अब खुशबू हर सू फैलेगी, एक जख्म गया है खिल सजना। हर रात तेरे बिन सीने पर है धरी हुई एक सिल सजना, हर हुस्न में वार दूं तुम पर से, क्या आंखें आरिज दिल सजना। हर हुस्न में मैं वार दूं तुम पर से, क्या आंखें आरिज दिल सजना। सीने में मीठा मीठा दुख आंखों में है झिल मिल सजना, अब दूर ही रह या मिल सजना, तुझे सौंप दिया है दिल सजना। तो जनाब नफा नुकसान के मानी जब बदल जाते हैं तो फिर कोई फर्क रहता नहीं है गुर्बत का या दूरी का, महजूरी का। गुमशुदा मोहब्बत के ख्वाबों की तरह है वो, रूह के सहरा में सराबों की तरह है वो, जीस्त के मकतब में नसाबों की तरह है, पढ़ता हूं उसे रोज किताबों की तरह है। अब उससे ख्यालों में ही हो जाती हैं बातें, जो बीच में पर्दा है हिजाबों की तरह है। और उस शख्स के लहजे में शीशे की खनक है, रग रग में उतरता है शराबों की तरह है। उस शख्स के पैकर में है शाखों सी लचक सी, उस शख्स का चेहरा भी गुलाबों की तरह है। वो वसल की रातों में है एक माह मुसलसल, वो वसल की रातों में है एक माह मुसलसल, फुरकत में वो शख्स अजाबों की तरह है। वो जीस्त के मकतब में निसाबों की तरह है।

तो जनाब ये जज्बात जो यादें बन जाया करते हैं और फिर दर्द भी हुआ करते हैं इनके साथ साथ। हर लहजा मकी दिल में तेरी याद रहेगी, बस्ती ये उजड़ने पे भी आबाद रहेगी। है हस्ती आशिक का बस इतना ही फसाना, बर्बाद थी बर्बाद है बर्बाद रहेगी। और है इश्क वो नेमत जो खरीदी नहीं जाती, ये शह है खुदा दाद रहेगी। वो आए भी तो जब्त से लब हिल न सकेंगे, फरियाद मेरी तिश्नाए फरियाद रहेगी। वो जुल्फ़ परीशा का सवारे न सवरना, वो उनके बिगड़ने की अदा याद रहेगी। हर लहजा मकी दिल में तेरी याद रहेगी, बस्ती ये उजड़ने पे भी आबाद रहेगी।

कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं। कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं। गुजर रहे हैं जब मरहलों से दीदा ओ दिल, सहर की आस तो है, जिंदगी की आस नहीं। और मुझे ये डर है तेरी आरजू ना मिट जाए, मुझे ये डर है तेरी आरजू ना मिट जाए। बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं। मेरी उदास नहीं। कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं।

0: सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी खूबसूरत समातों की नज़र कर रहा हूँ। शब केक हुआ चाहते हैं तकरीबन 2 बजे तक आपका मेरा साथ है इस महफिल में। 9202540920025 पर आपकी टेलीफोन कॉल, एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
1: जी।
0: जी कौन है, कहाँ से?
1: जी मैं लाहौर से निम्शा। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ।
1: और आपकी मुस्कुराहट कैसी है?
0: वो भी बहुत अच्छी है जी, जिन्होंने देखी है वो तो यही कहते हैं बहुत अच्छी है।
1: नहीं नहीं आपकी मुस्कुराहट जो है ना, जब आती है ना तो फिर शो भी खूबसूरत बन जाता है।
0: अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया।
1: क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से ही शो में रौनक होती है, कि जब आप सीरियस हो जाते हैं ना फिर बच्चे डर जाते हैं।
0: आपको समझ नहीं आती फिर बातें?
1: नहीं बातें मुझे समझ आती हैं, गहरी बातें आप करते हैं, लेकिन ना बार सफा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, कान मिलाते हुए भी डर लगता है।
0: ऐसा ही है, ऐसा ही है। इदराक हुआ मुझे कुछ अर्सा पहले।
1: जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था ना।
0: अच्छा ठीक है, आपने भी बताया था, ठीक है
1: जी। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो पता चलता है कि वाकई में आप कॉल कर सकते हैं, अब हमारा वक्त है।
0: चलें ठीक है, आप मुझे जब चाहिए होगा कि आपकी कॉल आए तो मैं मुस्कुरा दूंगा, फिर आपने कॉल कर लेनी है, ठीक है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं ना मुझे पता चल गया कि भैया का जो मूड है ना वो बिल्कुल मुस्कुराहट वाला है, अगर मैं कॉल करूंगी तो वो फिर मुस्कुराएंगे।
0: अच्छा चलें, कभी ऐसा हो कि मैं जब सीरियस हूँ तब भी करके देखिएगा, देखेंगे होता क्या है फिर।
1: जी जी मैंने किया हुआ है, आप जब सीरियस होते हैं, जब मैंने जब भी कॉल की उसके बाद मैंने करना छोड़ दी थी। जब मैं जब भी कोई शो सुनती हूँ ना, जब आपका सुनती हूँ तो पहले मैं ये देखती हूँ कि भाई कौन से कॉल पर मुस्कुराए, उसके बाद मैं कॉल करूँ।
0: चले ठीक है, अब और क्या कहेंगे मेरी मुस्कुराहट के अलावा?
1: आपकी मुस्कुराहट के अलावा एक छोटा सा शेर है जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगता है, अगर वो सुन रहे हैं तो फिर मैं ये शेर उनको डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: करें करें करें।
1: ये दो लफ्जों का ही है बस।
0: अच्छा दो लफ्जों का शेर है, ठीक है करें।
1: हाँ बस ये लहीने उनको बहुत पसंद है ना, कि तू मंगे ते जान भी हाजिर, तू मंगे ते जान भी हाजिर, मैं करना इनकार ते नहीं ना।
0: सही कहते हैं
1: वो। मंगे ते जान भी हाजिर, मैं करना इनकार ते नहीं ना, सारी दुनिया मिल भी जावे तेरे वर्गा यार ते नहीं ना।
0: बिल्कुल सही, ये आपने अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया ना?
1: उनको, जी उनको बिल्कुल, सुन रही हूँ तो उनको डेडिकेट हो गया। अच्छा, ना सुन रही है तो फिर कोई बात नहीं, आपने तो डेडिकेट करना था, कर दिया।
0: ठीक है ठीक है, वो आपने कहा कि उनको उनको बहुत पसंद है, वो आपको ही सुनाते हैं ये शेर है ना?
1: नहीं नहीं मैं उनको सुनाती हूँ।
0: अच्छा,
1: उनको मेरी जुबान से अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चले अच्छी बात है, सलामत रहे आप में मोहब्बत ऐसे ही कायम रहे, खुश रहे आबाद रहे, बहुत शुक्रिया।
1: मैं तो वैसे भी कल से यहाँ पे आई हुई हूँ, वैसे मैं भी इस्लामाबाद नहीं हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है, सलामत रहे आबाद रहे।
1: और आप इस तरह से मुस्कुराते रहते, प्लीज थोड़ा बहुत शो में भैया हंस लिया करें।
0: जी ठीक है, ऐसे ही करेंगे, खुश रहे।
1: और चाहते चाहते बस सभी सुनने वालों को मेरा सलाम, और अभी जो कराची वाली आप ही आई थी परवीन, आप ही उनको मेरा सलाम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी।
0: अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब।
2: आतिफ भाई मैं आतिफ अब्बासी बात।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी हरियत से।
0: मैं अच्छा हूँ जी, मैं अच्छा हूँ,
2: अल्लाह को अच्छा रखे,
0: आमीन। क्या कहेंगे हुजूर?
2: माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, शेख तरह तो
0: बहुत शुक्रिया।
2: आज मैं हजरत वो सैयद मंजूर हैदर शाह की एक छोटी सी गजल लाया हूँ।
0: सुनाए सुनाए सुनाए।
2: और उससे पहले अगर इजाजत हो तो उन्हीं का एक शेर
0: सुनाए सुनाए सुनाए।
2: वह है कि दौड़ने वालों ने क्यों मर्द मुकाबिल जाना, हम तो बच्चों की तरह स्टैन के अंदर दौड़े।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: तो उनकी गजल के कुछ अशार हैं कि दोस्तों पर कोई इल्जाम भी आ सकता है, कैसा दुश्मन हो किसी काम भी आ सकता है।
0: बिल्कुल ठीक बात है।
2: बस इसी आस पे नजरें हैं उफुक की जानिब, सुख कबूला सरे शाम भी आ सकता है। मैंने देखे हैं सभी अहले सितम के अंदाज, یوں گواہ ہوں میں، میرا نام بھی آ سکتا.

0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: राज तेरा है सो खामोश रहूंगा है दोस्त, जबकि सच है सरे आम भी आ सकता है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: जिंदगी ऐसा सफर है कि बाहर काम तलब, साथ आगाज के अंजाम भी आ सकता
0: अंजाम भी आ सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: दिन इसी ख्वाब की तस्बीह से पाता है सुकून, यूं तो अफलाक से पैगाम भी आ सकता है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: मैं डरस जाता हूँ ये सोच के दौरों ने तवाफ, वो किसी वक्त सरे बाम भी आ सकता है।
0: बहुत अच्छा।
1: और मकता है कि तय है जान भी अपनी ले सकता है हैदर, क्या कहें दर्द को आराम भी आ सकता,
0: आराम भी आ सकता। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सलामत,
1: बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें तमाम सुनने वालों के।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: एक और कॉल शामिल करते हैं जनाब, फिर कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी। अनिला बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप ठीक हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। दुआ करो जो जो जहाँ सुन रहे हैं अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: आमीन आमीन
1: जी। अच्छा, गुफ्तगू आपने जो स्टार्ट की थी अभी भी, वो भी बड़ी अच्छी हो रही थी।
0: हाँ हाँ।
1: और आपने जो भी कलाम पढ़े वो भी बड़े खूबसूरत।
0: बहुत शुक्रिया।
1: इनमें से एक दो ऐसे थे जो मतलब शायद फर्स्ट टाइम ही पढ़े गए।
0: ठीक है।
1: हाँ, अच्छे पढ़े, बहुत खूबसूरत।
0: मुझे तो याद नहीं रहता क्योंकि मैं तो कितनी दफा पढ़ चुका हूँ और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ कौन सा पहली दफा पढ़ा है और यहाँ कौन सा तीसरी दफा पढ़ा है, ये मुझे याद नहीं रहता।
1: हाँ, कहाँ याद रहता है, सही
0: हाँ,
1: कह रहे हैं।
0: हाँ, हाँ.
1: क्योंकि माशाल्लाह से आप बहुत सारे कलाम पढ़ते हैं तो भूल जाता है।
0: ऐसे ही।
1: तो लेकिन ये है कि हमें जब बाज़ ऐसा होता है ना कि हमने शायद किसी शो में ना भी सुनो,
0: ऐसे ही है।
1: हो सकता है मैं पढ़ाओ, हमने
0: बिल्कुल।
1: इसमें सुने इसलिए हमें लग रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सुने हैं। तो
0: बिल्कुल ठीक
1: ऐसा
0: है
1: ही है। कुछ पढ़ना चाहूंगी
0: जी। इरशाद।
1: जी। जाने के बाद अपनी निशानी को खा गया।
0: ठीक है।
1: जाने के बाद अपनी निशानी को खा गया। कैसा अजीब शख्स था, पानी को खा गया।
0: अच्छा, बहुत अच्छा।
1: ये शक हकीकतों में मोहब्बत की मौत है। दीमक लगा तो लकड़ी पुरानी को खा गया।
0: बहुत अच्छा।
1: वरना हम भी किसी और ही लहजे का शेर थे।
0: वरना हम भी किसी और ही लहजे का शेर थे।
1: जी, वरना हम भी किसी और ही लहजे का शेर थे। जालिम समाज मिसराए सानी को खा गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, खूबसूरत अच्छे।
1: जालिम समाज
0: मिसरा एहसानी को खा गया।
1: सानी को खा गया।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये वो मुझे टाइटैनिक वाला याद आया था, बच वो भी सकता था। उसने उसको पट्टे से
1: लेकिन
0: मिसरा एहसानी बेचारा पता नहीं क्यों मारा जाता है।
1: मारा गया। बस अब ये तो उसको पता था ना उसे क्यों मारे जा रहा है।
0: नहीं, वो फट्टे पे दो लोग आ सकते थे लेकिन
1: जा सकते थे
0: चले।
1: लेकिन वो स्टोरी भी तो बनानी थी ना।
0: ऐसे ही है, मिश्रा सानी खाना पड़ता है। ठीक है
1: ऐसे ही खाना पड़ता है।
0: ठीक है, ऐसे ही है।
1: एक बेल किसी सरसब्ज पेड़ को खा गई।
0: ठीक है।
1: एक बेल किसी सरसब्ज पेड़ को खा गई।
0: खा गई।
1: एक किरदार पूरी कहानी को खा गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये कैदों का जिक्र हो रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: एक किरदार पूरी कहानी को खा गया।
0: ठीक है।
1: ये शख्स जो तेज तेज चलता है वक्त से, दरिया की 30 साल रवानी को खा गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा,
1: शुक्रिया। फिक्रे माश था या मोहब्बत थी किसी की। ये और गलत है।
0: फिक्रे माश था या
1: मोहब्बत
0: थी।
1: माश था या मोहब्बत थी किसी की। कोई तो था जो मेरी
0: जवानी को खा गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शायर यही कहते हैं और क्या है क्या उनके पास। ठीक है।
1: उनके पास सोच का बहुत जखीरा होता है
0: ना। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं।
1: आए, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सर। और सबके लिए बहुत सी दुआएं। जाते जाते हमीद गुल साहब की शायरी की दो लाइनें बोलूंगी
0: जी। बोलिए।
1: फूल सहराओं में खिले होंगे,
0: फूल सहराओं में खिले होंगे,
1: दामन के
0: खिले
1: खिले
0: होंगे,
1: फूल सहराओं में खिले होंगे, चाक दामन के भी खिले होंगे, होंगे। इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं। आप कहते हैं तो मिले होंगे।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है।
1: माननी पड़ती है ना, क्या करें, कोई बात नहीं।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलामत रहे आप।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम
1: जी। सलाम, बात कर रही हूँ।
0: ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ, कैसी हैं आप? ठीक है
1: जी, ठीक ठाक।
0: सही, फरमाइए क्या कहेंगी। एक अपनी पसंद का सुना रही है और एक फैज अहमद फैज की पसंद का?
1: नहीं नहीं वो भी मेरी पसंद का है।
0: अच्छा ठीक है,
1: मैंने की है।
0: ठीक है, मैं क्या फैज साहब ख्वाब में आए थे क्योंकि मेरी ये पसंद है, जरा सुनाना तेरे को। चले सुनाइए सुनाइए।
1: पहले अपनी वाले शेरे फना हूँ तेरे किस काम का हूँ, एक पूछता सा दिया हूँ तेरे किस काम का हूँ, तू भी औरों की तरह किनारा कर ले सारी दुनिया से बुरा हूँ तेरे किस काम का हूँ।
0: इस सिंपथी लेने वाला दौर में से चला गया है वो ये शायर हजरात को ना, वैसे मुझे ख्याल आया ये कि अब शायर शायर जरा आगे निकल गए हैं। वो कहते हैं कि कहने लगी गरूर से खत दीजिए मेरे, मैं भी तो कूड़ा दान उठाने चला गया। अब थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है शायरों में। चले खैर अगला सुना।
1: नए दौर के शायर है ना?
0: नए दौर के शायर है, ऐसे ही है।
1: चले अब फैज अहमद फैज को भी पढ़ लेते हैं।
0: जी जी
1: चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते
0: हैं। ठीक है,
1: जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं सारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर तभी दरियाए रिफत के किनारे बांट लेते हैं।
0: बहुत अच्छा।
1: मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठ कर सारे के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं फैज, इसी दौलत को हम
0: किस्मत के मारे बांट लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगी?
1: और बस यही कि मोहब्बत में आपने पहले थोड़ी देर पहले बात की है, तो मोहब्बत में ना कोई खसारा देखता है ना कोई मुनाफा देखता है, और जिसमें ये चीज देखी जाती है वो मोहब्बत नहीं होती।
0: ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। सलामत रहें जी, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज़।

मुझे अपने जब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। मेरी जिंदगी के चिराग का ये मिजाज कोई नया नहीं, अभी रोशनी अभी तीरगी, ना जला हुआ ना बुझा हुआ। मुझे जो भी दुश्मने जा मिला, वही पुख्ताकार जफा मिला। न किसी की ज़र्ब गलत पड़ी, ना किसी का तीर खता हुआ। मुझे आप क्यों ना समझ सके, ये खुद अपने दिल ही से पूछिए। मेरी दास्तान हयात का तो वर्क वर्क है खुला हुआ, और जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला हुआ। मुझे गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खूने दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। हमें इसका कोई भी हक नहीं कि शरीक बज़्म खुलूस हो, ना हमारे पास नकाब है, ना कुछ आस्ती में छुपा हुआ। मुझे हम सफर भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह, कई मंजिलों का थका हुआ, कहीं रास्तों में लुटा हुआ। हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई, कोई जुस्तजू का सिला मिला, ना सफर का हक ही अदा हुआ। मुझे गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब एफ एम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन। 1:32 हुआ चाहते हैं, फिर से बढ़ूंगा आपकी टेलीफोन कॉल्स की जानेब, और जो सामीन नंबर नहीं जानते उनके लिए बताता चलूं 9202540920254 और इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051 यानी 051। इसके साथ साथ पैगाम भी पहुंचाइएगा 4471 पर 4471। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है सर? आप ठीक हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत अच्छा हूँ।
1: पहले मेरा गिला सुने आप।
0: जी जी हजूर।
1: आप मुझे बात कर लेते हैं, मैं आज आपसे बात करना चाह रहा
0: हूँ। जी जी कीजिए कीजिए।
1: इजराए तफन्नुन है। जहाँ आप, तुमने अभी कुछ देर पहले मेरी 5 कॉलें ड्रॉप करा दी।
0: अच्छा, मैंने आपकी 5 कॉल्स ड्रॉप करा दी।
1: ड्रॉप होगी ना?
0: अच्छा,
1: सुने तो सही ना।
0: अच्छा,
1: जहाँ रात तेरे फोन की एक लाइन खराब है, दिल बात दिल तुझसे बात करने को बेताब है। जहाँ रात तू मुझे सुबह बूढ़े अतार यूसुफ की सामने की दुकान इजी लोड पे मिलना।
0: ठीक है।
1: ये जुर्माना है आप पे।
0: आजकल जहाजात को इजी लोड दूसरे लोग करवा देते हैं, आजकल वो जाती नहीं है तार यूसुफ की दुकान पे। ठीक है।
1: तो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह के थक गया हूँ कि एक लाइन खराब है।
0: अच्छा,
1: वो पाइप लाइन में चली जाती है।
0: अच्छा चले, ठीक है।
1: तो मैंने कहा आप जहाजात पढ़ रहे हैं, मैं भी जहाजात को एक नए पैर है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: इंट्रोड्यूस कराओ उसको एक नए रंग में।
0: बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है।
1: आप ठीक है, बड़ी खूबसूरत पढ़ी आपने। मेरी एक गुजारिश है आपसे, थोड़ा आहिस्ता पढ़ा करें इसको।
0: वो है बहुत तवील, फिर बहुत वक्त ले जाती है।
1: नहीं, वो नज़्म का जो रिदम है वो टूट जाता है।
0: चलें फिर अगले प्रोग्राम में आधा घंटा फिर इसी को है।
1: नहीं, आप आधे घंटे की जगह उससे भी 45 मिनट लें।
0: अच्छा ठीक है।
1: वो उसका एक रिदम है ना।
0: ठीक है, वो आपको तो समझ आ जाएगी। फिर वो जो आते हैं कहते हैं जी आप वो जो मुस्कुराने की बात कर रहे होते हैं उनको, वो फिर कहते हैं कि ये क्या, हमें तो समझ ही नहीं आई गुजर क्या है और
1: ये
0: लीला मुंह क्या है।
1: आपने आप माइक आपके हाथ में होता है, आपने।
0: अच्छा ठीक है,
1: ठीक है ना। वो तो इस तरह आजकल तो बहुत सारी बातें, बहरहाल
0: चले सुनाए
1: को क्या करते हैं। मैं आपको लियाकत अली यासीन की गजल सुनाता
0: हूं। सुनाए।
1: कहते हैं कि हदूद ख्वाब से वाहिद के ख्वाब हैं मेरे दोस्त।
0: बहुत अच्छा।
1: हदूद ख्वाब से बाहिर के ख्वाब हैं मेरे दोस्त,
0: बाहिर के
1: ख्वाब बहुत खराब, बहुत ही खराब हैं मेरे दोस्त।
0: बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा।
1: नहीं, इसमें ठीक क्या बात है? ठीक क्या बात है?
0: दोस्त दोस्त खराब ही होते हैं जी, खराब दोस्त ठीक रहते हैं।
1: वो देखे ना, जवाहर शेर ने भी एक गजल में कहा था ना कि क्या है जो मैं हो गया हूँ, थोड़ा बहुत,
0: थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए,
1: थोड़ा बहुत खराब तो होना ही चाहिए।
0: ऐसा ही है, ऐसा ही। मुझे अच्छे लोग बहुत मिले, मैं तो उनके कर्ज से मर गया। अरे हो सके तो कभी कभी तो खराब बन के मिला करो।
1: अब आप देखें इसमें कितनी खराबियां कि हदूदे ख्वाब से बाहर के ख्वाब हैं मेरे दोस्त, बहुत खराब, बहुत ही खराब है मेरे दोस्त।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: और इधर दिखाई दिए और उधर हुए ओझल, शराब से भी ज्यादा शराब है मेरे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये भी ठीक बात है, बिल्कुल।
1: अच्छा,
0: ये भी बिल्कुल ठीक बात है।
1: इससे एक्चुअली इससे भी अगली अगली जो शेर है वो उससे भी बड़ा अच्छा है कि मिलाया हाथ गले से लगाया चल पड़ा, मिलाया हाथ गले से लगाया चल पड़े, अब इस कमाश के तो बेहिसाब हैं मेरे दोस्त।
0: बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है।
1: हाँ, पर जमानों जमानों बाद मिले हैं तो कैसे मुंह फेरूं,
0: जमानों बाद मिले हैं तो कैसे मुंह फेरूं,
1: मेरे लिए तो पुरानी शराब है मेरे।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: पर बहुत जहीन किताबों से चुन के लाया हूँ, بہت ذہین کتابوں سے چن کے لایا ہوں, انہیں پڑھو, ورق انتخاب ہیں میرے دوست.
0: واہ واہ واہ واہ واہ, بہت اچھا جی, بہت اچھا.
1: اور اس کا مقتہ تھا کہ میرے سوال پہ خاموش اٹھ گئے عاصم,
0: میرے
1: سوال پہ خاموش اٹھ گئے عاصم, میرا خیال تھا حاضر جواب ہیں میرے دوست.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, بہت اچھا جی, بہت اچھا, بہت اچھا.
1: میں آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں کچھ چیز گنگناؤں.
0: اچھا, گنگنائیے جناب, گنگنائیے.
1: لیکن میں نے سوچا کہ میں اس طرح گنگنا نہیں سکتا, میرے وہ شعر پڑے گئے.
0: ترک کر دیا آپ نے پھر؟
1: ہیں
0: ترک کر دیا کہ کرنے لگے ہیں جسارت؟
1: نہیں نہیں, میں کہاں گنگنا سکتا ہوں.
0: اچھا ٹھیک ہے جی, اچھا کیا آپ نے.
1: ایسی بات نہیں ہے, میں جب گنگنانے اور ترنم میں بڑا فرق ہوتا ہے.
0: ایسے ہی ہے,
1: ٹھیک ہے نا.
0: ایسے
1: مطلب جس طرح کا مطلب کچھ لوگوں کو تو اللہ نے بڑی خاص خوبصورت آواز دی ہے,
0: بالکل
1: سرا نہیں. دل کر رہا تھا کہ وہ میں
0: ترنم کے ساتھ پڑھوں. بس بالکل ٹھیک کیا آپ نے, ترک کر دیا ارادہ. یا ہے, میں کہہ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں, جسارت کرنے لگے.
1: میں نے وہ جہاں جات تم نے میری پانچ کالیں ڈراپ کروا دی,
0: اچھا
1: ادھر میرا دھیان چلا گیا, ورنہ میں اس کی وہ دھن نہیں ہوتی, وہ میں نے ترتیب دے دی تھی.
0: اچھا چلیں,
1: میں نے کہا اب آتر صاحب جو ہیں پانچ کالیں میری ڈراپ ہو گئی, سر میڈم صدر رانی کو کہے یہ ایک لائن ٹھیک کروائیں.
0: اچھا چلیں, ٹھیک
1: ہے,
0: اگلے پروگرام میں آپ کا ترنم سنیں گے جناب, ٹھیک ہے, سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.

कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। उसको ना पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखी है बात थी कुछ महाल भी। और मेरी तलब था एक शख्स, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी।

मेरा नाम है आदिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि अब आपसे इजाजत लेनी होगी, और जाने से पहले चंद सत्रें जो काविश हुआ करती है कि आपके तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं। मोहब्बतों की वसत और नफरतों में शिद्दत, ये जज्बे हैं जो इंसान की जिंदगी हुआ करते हैं। इसके सिवा जो कुछ भी है वो बस वक्त है जो गुजार रहे हैं हम, और गुजारना होता है। ये वक्त हमारी गिरफ्त में आता नहीं है और इसे बिताने के कुछ असबाब पैदा करने होते हैं। तो ये जो जज्बे हमारी जात के अंदर वदियत कर दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं कारामत साबित हुआ करते हैं, और ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम इन जज्बों का इस्तेमाल कितने बेहतर तौर पर कर सकते हैं इसका हमें इदराक हो। इंसान की कुछ हदूद हुआ करती है, हर इंसान अपनी हदूद खुद बनाता है। अगर देखा जाए तो मैं एक छोटे से जज्बे की बात करूं जिसको आम तौर पर छोटा सा जज्बा समझा नहीं जाता, लेकिन अगर एक जाविये से देखा जाए तो यह गुस्से का हमारी जात के अंदर होना भी कहीं ना कहीं हमारी जात के लिए फायदेमंद साबित हो रहा होता है। क्योंकि कोई जगह, कोई मकाम, कोई वक्त, कोई लम्हा ऐसा होता है जहां इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी भी शय में तजावुज जब हो जाया करता है तो वो खतरनाक हुआ करती है, वो मुजर हो जाती है, सिवाय एक शय की, और वो है मोहब्बत। ना इसको महदूद किया जा सकता है, ना इसको कैद किया जा सकता है। वो मोहब्बत जो वारिद होती है इंसानों पर, जो वदियत की जाती है इंसानों को उनकी जात के अंदर, जो मुंजमिद हुआ करती है और कोई तमाजत उसको पिघलाया करती है, जब वो मोहब्बत सामने आन खड़ी हो, जब वो मोहब्बत अपना आप दिखा दे, जब इंसान उस मोहब्बत से आशना हो जाए, तो उसका असल इम्तिहान शुरू होता है। तब वो इंसान सरापा इश्क बनता है या अपनी मोहब्बत को महदूद कर दिया करता है। तब वो मांगता है तो सबके लिए मांगता है या उसके सामने सिर्फ अपनी जात हुआ करती है। वो जब दुआओं को हाथ उठाता है तो उसकी दुआओं में दूसरे लोगों के लिए कुछ होता है या सिर्फ अपनी जात के लिए? जब उसके पास इख्तियार होता है तो वो उस इख्तियार का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए करता है या दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है? ये होता है इंसान का इम्तिहान। और अगर इंसान पलट कर अपनी जिंदगी की तरफ देखता है तो ये सोचता है कि बहुत से ऐसे मकाम आए जब मैं मुजमहिल था, जब मुझ पर मुसीबत थी, जब किसी कर्ब में था। ये सब बहाने हुआ करते हैं हम इंसानों के पास। जब हमें इख्तियार मिल जाता है तो हम उसको सिला समझते हैं, अपने किसी ऐसे गुजरे हुए कर्ब, अपने किसी ऐसे दर्द के बदले का। मोहब्बत इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है और सबसे बड़ी जरूरत भी। मोहब्बत का जज्बा नहीं पाया जाता जिन लोगों में, वो लोग जिंदगी गुजार तो लिया करते हैं, जिंदगी जी नहीं पाते। जिंदगी जीना कुछ और है और जिंदगी गुजारना कुछ और है, क्योंकि गुजारना तो हमारे इख्तियार में है नहीं, ये तो गुजरती जाएगी, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। कोई
अपनी मुट्ठी बंद भी कर ले तो रेत की तरह यह वक्त निकलता चला जाता है। इस वक्त को अपनी गिरफ्त में करने का एक ही रास्ता है और वो मोहब्बत का रास्ता है। कोई भी इंसान जब कुछ भी करता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि उसने सही किया या गलत किया। और गौर करें, जब हम उस अंदर की आवाज को दबा दिया करते हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं ये जानते हुए कि हम गलत थे, और हम कोई ना कोई मंतक लगा दिया करते हैं कि नहीं, हम हकदार थे, हम ऐसा करने का हक रखते थे, जबकि हमें मालूम होता है कि हमने गलत किया था। ये जिंदगी का बहुत खतरनाक वक्त हुआ करता है जब हमारा अपना नफ्स, हमारी अपनी जात हमसे हमदर्दी कर रही होती है और हमें वो वक्ती मीठे बोल बता रही होती है जिसमें हम वक्त हुआ करता है। जब हमारा अपना नफ्स, हमारी अपनी जात हमसे हमदर्दी कर रही होती है और

हम तेरे बंदे हैं, तो जो तू कहेगा हम वो मानेंगे, हम वो मनन तस्लीम करेंगे। जो राह तूने बताई, जिसको तूने सिराते मुस्तकीम कहा, उस पर हम चलेंगे। हम मखजूब अलैहिम वालों से बचेंगे और अनमत अलैहिम वालों में शामिल होने की कोशिश करेंगे। तो वो हिस्से अखलाकियात है जो हमारी जात के अंदर पनपती है, रहती है। इंसान कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके अंदर हिस्से अखलाकियात होती है। कोई भी इंसान जानता है जब उसने झूठ बोला तो उसको अंदर से एक आवाज़ आती है कि उसने गलत किया। उसने बेईमानी की तो वो आवाज़ आती है, उसने किसी का हक मारा तो वो आवाज़ आती है। और जब उस आवाज़ को हम कोई मंतक देकर अपनी तरफ से दबा दिया करते हैं तो वो हमारी बर्बादी का आगाज होता है। नदामत करने वाली की कसम खाई है उन्होंने। जो इंसान नदामत कर लिया करता है अपनी गलती के बाद, तस्लीम कर लिया करता है अपनी गलती को, दलील हुआ करती है ये कि वो उस राह पर गामजन है, या कम से कम उसके अंदर जुस्तजू है कि वो उस राह को पाले। जो राह अनमत अलैहिम वालों की राह है, और जिस राह को वो सिरात मुस्तकीम कहते हैं, जिस राह पर वो लोग चलते हैं जो मोहब्बत वाले लोग हैं, जो इश्क वाले लोग हैं, वो लोग जो झूमते चले जाते हैं इश्क की राहों पर और सरापा इश्क हुआ करते हैं, जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, वो लोग जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, जो बंजर मौसमों में बारिशों के गीत गाते हैं, जो तितली फूल और खुशबू के मौसम साथ लाते हैं, जो जख्मी फाख्ता को घोंसले तक छोड़ाते हैं, जो बिछड़ी कूंज को फिर डार से वापस मिलाते हैं, उसे तन्हाइयों में मौत के दुख से बचाते हैं, जो शहरे बेवफा में भी क्या वादे निभाते हैं, जो करके हाथ जख्मी राह से कांटे उठाते हैं, वो जिनके हाथ में दिए दुआ के झिल मिलाते हैं, जो अपने नाम से इंसानियत को मोतबर कर दें, मोहब्बत की निगाह ऐसी के जर्रे को घोर कर दें, जो पत्थर खाएं, देखें, मुस्कुराएं, दरगुजर कर दें, जो अपनी जात की परछाई से आगे निकल जाएं, किसी की आंख के आंसू सितारों में बदल जाएं, वो जिनको देख के सब दर्द के सूरज पिघल जाएं, और वो जिनके अपने पांव में कई गिरदाब होते हैं मगर वो रूह की पाताल तक शादाब होते हैं, वो ऐसे लोग जो हर दौर में नायाब होते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं। और यही वो लोग हैं जो मोहब्बत वाले लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो अनमत अलैहिम वाले लोग हैं। कहीं ये लोग नजर आ जाएं तो बस उनके नक्शे कदम पर चलने की काविश करने की जरूरत है हमें। जहां वो कदम रखें उसी निशान पर अगर हम कदम रखते चले जाएं तो यकीनन वो राह सिराते मुस्तकीम ही होगी। जिंदगी में जो दरकार हो वो तकसीम कीजिए। खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटिए, आसानियां चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए। अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में छुपा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमतों और बरकतों का नजूल होगा आपकी जिंदगी पर। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद हो नाचीज को याद रखिएगा। और कोई बात समखराशी का बाइस बनी हो तो माजर चाहूंगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले इतवार की शब फिर हाजिर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान आतिर अली सैयद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।